0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
0: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित

हत्या निमित्ताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को इस परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। होर्मुज डमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं बना रहा है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और दावा किया है कि उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। उनकी ये टिप्पणी ईरान, ओमान और अमरीका के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए चल रही बातचीत के रुकने के बीच आई है। मुंबई की सोम्या विद्या विहार यूनिवर्सिटी में खेले गए FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 की टीम इवेंट फाइनल में भारत और हांगकांग चीन के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा, लेकिन गेम के बेहतर अंतर के आधार पर भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक EOD अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोची में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रुति होम मॅगिलियन हे अंतराळयान शुक्रवार पोहोचले ते 1990 साली.

0: कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। सब बोला, अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
1: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्मी ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
3: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
4: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्ण का।
2: महाराष्ट्र में देशभक्ति के उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। राज्य के कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीड में जिला प्रशासन, जिला खेल अधिकारी कार्यालय और विभिन्न खेल संगठनों ने मिलकर जिला खेल परिसर से एक तिरंगा रैली आयोजित की। बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका नेतृत्व करेंगे।
5: कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित ये यात्रा सुबह

0: बजे जीपी गोलंबर से रवाना होकर कारगिल चौक पहुंचेगी। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर प्रखंड को जीविका के माध्यम से 4000 तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। गौरतलब है कि तिरंगा यात्रा का बिहार में विशेष महत्व है, क्योंकि 11 अगस्त 1942 में बिहार के 7 वीर विद्यार्थी तत्कालीन पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराने के क्रम में अंग्रेजों की गोलियों से एक एक कर शहीद हो गए थे। तिरंगे की शान के लिए जान की बाजी लगाने वाले इन छात्रों की याद में पटना विधानमंडल के सामने शहीद स्मारक बनाया गया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: मणिपुर में भी हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया है। ये अभियान 17 अगस्त 2026 को समाप्त होगा। अभियान के दौरान नागरिक अपने घरों पर तिरंगा ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने इम्फाल पश्चिम जिले के सिंगाजामी स्थित अपने आवास से अभियान में भाग लेते हुए लोगों से पहले खुद को भारतीय और फिर मणिपुरी मानने का आग्रह किया। दिल्ली मेट्रो रेल ने स्वतंत्रता की भावना का उत्सव मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन शुरू की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन को तैयार किया गया है। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेंगी। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। एक रिपोर्ट।
2: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है, जिसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है। ये 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। मंत्रालय ने कहा कि 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन रहित बिजली उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई, जिसमें सौर ऊर्जा का 44.6 गीगावाट और पवन ऊर्जा के 6 गीगावाट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये 2014-15 में लगभग 191 अरब यूनिट से बढ़कर 2025-26 में 477 अरब यूनिट से अधिक हो गई है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: झारखंड में पुलिस ने विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है और रांची में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
3: झारखंड में कथित भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच लगातार 3 दौर की वार्ता में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच, प्रभावित परीक्षाओं को रद्द करने, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर चर्चा हुई। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की विस्तृत जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है, इसलिए इसे सीधे रद्द करना संभव नहीं है। उधर छात्रों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम पर कायम है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसलुनिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुस जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित 2 रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते

0: रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसनुलिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेलमार्गों का पता लगाया जा सकता है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम भार उठाया। वियतनाम के वांग थाश ने 291 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले दो दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय है। मॉनसून टर्फ और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश होने का अनुमान है। भोपाल और उज्जैन संभाग में रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में तेज बारिश का दौर अगले दो दिन तक रह सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मूसलाधार बारिश की संभावना के मद्देनजर अधिकारी कमजोर तटबंधों और निचले इलाकों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियों का जल स्तर फिर से बढ़ रहा है, जबकि भद्रक और जाजपुर में बैतरणी, सालंदी और कानी नदियों के पानी ने गांवों, खेतों और सड़कों को जलमग्न कर दिया है। केंद्रापड़ा के कई इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। IMD ने अगले 24 घंटे के दौरान कई उत्तरी और पश्चिम जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और मौसम प्रणाली के कारण आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश जारी रहने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आज बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के लिए व्यापक व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
3: कांवड़ यात्रा ऐप श्रद्धालुओं और प्रशासन के बीच संवाद की सीधी कड़ी बन गया है। तीर्थयात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर जरूरी जानकारी मिल रही है। वहीं नियंत्रण कक्ष और फील्ड अधिकारी एक साथ ही जमीनी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। ये ऐप श्रद्धालुओं को एक क्लिक पर यात्रा से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ऐप में पूरे रास्ते का मानचित्र, मंदिर, शौचालय, चिकित्सा सुविधाएं और भोजन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। श्रद्धालु शिकायत या आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए भी इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, झारखंड में झुकी सरकार, JPSC के सभी सदस्यों का इस्तीफा, 3 परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति, प्रदर्शनकारी CBI जांच पर अड़े। बिहार में शिक्षा परीक्षा सुधार के लिए बनेगी समिति, नव भारत टाइम्स लिखता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण और छात्र केंद्रित बनाने के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की। संसद के मानसून सत्र को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका के अनुसार संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टूट सकता है गतिरोध, लोकसभा में आ जाएंगे 4 विधेयक, मिर्जा को भारतीय कानूनों का करना होगा पालन, दैनिक जागरण की खबर है। फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की टर्बुलेंस फ्लाइट के मुख्य पायलट का ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट संदिग्ध पाया गया, दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार परीक्षण की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार, जांच और परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक DGCA ने उड़ान चालक दल के दोनों सदस्यों को ड्यूटी से हटाया।

0: फंड में नॉमिनी जोड़ना ही होगा। हिंदुस्तान के बिजनेस पन्ने पर है। बाजार नियामक सेबी के नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi urges people to join Har Ghar Tiranga movement and hoist the tricolour at homes. India crosses 300 gigawatts of non-fossil fuel-based installed electricity generation capacity. Indian and US Navy's explosive ordnance disposal exercise to begin today at Southern Naval Command in Kochi. Russia proposes railway route to India to reduce dependence on strategically important maritime routes like Strait of Hormuz. And Maharajan Arumuga Pandian clinches silver medal in men's 65 kg category at Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. In a social media post, Mr. Modi said, "Our tricolour is our pride and a constant source of inspiration to always give our best for the nation." The Prime Minister said he is glad that this year's efforts are dedicated to Vande Mataram and that too at a time when we are marking its 150th anniversary. In his Man Ki Baat program on Akashwani last month, Mr. Modi urged people to hoist the tricolor at homes.
3: पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है।
2: More on this in this report.
4: Ghar ghar tiranga, har ghar tiranga.
5: The Ministry of Culture has said the Har Ghar Tiranga campaign this year would seek to bring the spirit of patriotism to streets and homes across the country through Tiranga Yatras, Tiranga rallies, Tiranga concerts and mass singing of Vande Mataram. The ministry said the 150th anniversary of Vande Mataram would provide an opportunity for citizens to celebrate the national song as part of the Independence Day festivities. A key feature of this year's celebrations will be Surya Path Tiranga, described by the ministry as a first of its kind initiative aimed at bringing Indians across the world together in a global celebration of the tricolour. The ministry has appealed to citizens to hoist the national flag at their homes and upload their selfies on the Har Ghar Tiranga website. The Har Ghar Tiranga campaign has emerged as a nationwide public participation initiative associated with Independence Day celebrations, encouraging citizens to display the national flag and express their connection with the country. Ashish Abraham, Akashwani News, Delhi.
2: The Har Ghar Tiranga movement is gaining momentum across the nation. In Maharashtra, the Har Ghar Tiranga campaign has begun with patriotic fervor. More from a correspondent.
6: Tiranga rallies were organized in various districts of Maharashtra, including Bid, Thane and Buldhana, with enthusiastic participation from students, sportspersons, NCC cadets and citizens. In Thane, a cycle rally also promoted environmental conservation and healthy living. In Buldhana, awareness was created about tuberculosis and drug-free India through rallies and street plays. Prarthana, Akashwani News, Mumbai.
2: In Bihar, Tiranga Yatra will be organized in Patna today under the campaign. Our correspondent reports that Chief Minister Samrat Chaudhary

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। साथियों, मुस्कान वो खूबसूरत एहसास है जो बिना कुछ कहे दिलों तक पहुंच जाता है। इसे बांटने में कोई खर्च नहीं होता, मगर किसी का पूरा खूबसूरत दिन बन सकता है। यानी कि आपकी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है। तो कभी कभी यूं ही बेवजह मुस्कुरा लेना चाहिए किसी को देखकर, ताकि उनका दिन बन जाए और आपकी मुस्कान से आपका भी दिन अच्छा शुरू हो जाए। तो चलिए इसी के साथ सुनते हैं भूल भुलैया 3। इस फिल्म का गीत सोनू निगम की आवाज, समीर की शब्द रचना और अमाल मलिक और प्रीतम का संगीत।

भूल भुलैया तीन फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आइए अब आपको सुनवाते हैं धमाल चार। इस फिल्म का गीत आवाज संजू राठौड़ की। रश्मि विराग और संजू राठौड़ ने इस गीत की रचना की है, तनिष्क बागची और संजू राठौड़ का संगीत।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी।
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं एमी विर्क और बी प्राक की आवाजों में योद्धा फिल्म का गीत। जानी ने इसके बोल लिखे हैं और बी प्राक और आदित्य देव का संगीत।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं सितारे जमी पर। इस फिल्म का गीत सिद्धार्थ महादेवन और शंकर महादेवन और दिव्या कुमार की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं शंकर एहसान लॉय का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, प्रीतम का संगीत।

0: पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय के साथी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, चलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
3: पति पत्नी और वो दो, इस फिल्म का गीत सुनिए उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, समीर की रचना, आनंद मिलिंद का संगीत।
4: आज न छोड़ूंगा तुझे, तूने क्या समझा है मुझे।

0: पति पत्नी और वो दो इस फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
1: आकाशवाणीचं हे अमरावती केंद्र आहे FM 101.5 MHz वर आणि प्रसार भारतीच्या न्यूज ऑन AIR या मोबाईल

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना दो रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, उन्हें कोठे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संग।

फिल्म संगीत के चाहने वालों में बिरला ही कोई होगा जिसने महल फिल्म का ये गीत ना सुना होगा। हम बात कर रहे हैं 40 के दशक के मशहूर संगीतकार खेमचंद प्रकाश की। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्हें समुचित सम्मान और प्रसिद्धि मृत्यु उपरांत मिली है। खेमचंद प्रकाश उन्हीं में से एक थे।

0: हेमचंद प्रकाश का जन्म 12 दिसंबर 1907 को राजस्थान के सुजानगढ़ में हुआ था। न केवल संगीत बल्कि नृत्य की भी आरंभिक शिक्षा उन्हें अपने पिता से मिली, जो राज दरबार में ध्रुपद गायक और कथक नर्तक थे। किशोरावस्था में ही खेमचंद प्रकाश को पहले बीकानेर और उसके बाद में नेपाल के राज दरबार में गायक कलाकार के रूप में नियुक्ति मिल गई थी। आगे किस्मत उन्हें कोलकाता ले आई, जहां वे सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माण कंपनी न्यू थिएटर्स में नियुक्त हुए। 1935 में बनी फिल्म देवदास के संगीतकार तिमिर बरन के सहायक के रूप में उन्होंने काम शुरू किया। 1938 की फिल्म स्ट्रीट सिंगर के लिए खेमचंद प्रकाश ने एक मजाहिया गीत भी गाया।
1: ये साधन है ये चपाती।

0: अभी फिर जाओ, तुम ठहरो अभी ले आओ।
1: क्या भूख से मैं मर जाऊं, क्या कच्चा तुझे जमाऊं, ना माकूल कथे की झूल हुए चिंदूल।
0: अब देर न होगी बच्चो, तुम बच्चो बच्चो।
2: उसके बाद खेमचंद प्रकाश मुंबई आ गए। शुरुआत हुई 1939 में। सुप्रीम पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्में मेरी आंखें और गाजी सलाउद्दीन के लिए उन्होंने संगीत निर्देशन किया।

और फिर बहुत जल्द रणजीत मूवीटोन फिल्म स्टूडियो के नियमित संगीतकार के रूप में खेमचंद प्रकाश नियुक्त हुए। उस शुरुआती दौर में रणजीत मूवीटोन की फिल्में थीं दिवाली, होली, परदेसी, फरियाद इत्यादि। उन दिनों खेमचंद प्रकाश के गीतों में ज्यादातर स्वर होता था खुर्शीद का। इस जोड़ी ने 40 के दशक के आरंभ में बहुत से मशहूर गीत दिए। 1943 में बनी रणजीत स्टूडियो की फिल्म तानसेन जबरदस्त हिट हुई।

1948 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आई जिद्दी। इस फिल्म में एक गायक के रूप में किशोर कुमार को सबसे पहला अवसर दिया संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने। जिद्दी का ही एक और गीत जो लता जी ने गाया था, संगीत प्रेमियों द्वारा खूब पसंद किया गया।

फिर 1949 में आई फिल्म महल। महल के पहले बाजार में फिल्मी गीतों के जो रिकॉर्ड्स मिलते थे, उन ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स पर फिल्म की कहानी के उस गीत को पर्दे पर गाने वाले पात्र का नाम हुआ करता था। महल फिल्म का ये गीत आएगा आने वाला रिकॉर्ड पर इन बोलों के आगे नाम लिखा था कामिनी। ऑल इंडिया रेडियो से ये गीत प्रसारित हुआ। बहुत से सुनने वालों ने रेडियो के दफ्तर में फोन करके जानना चाहा कि ये आवाज किसकी है, और फिर रेडियो से गायिका का नाम प्रसारित हुआ, लता मंगेशकर। संगीतकार खेमचंद प्रकाश। इस गीत को और लता जी को बेशुमार शोहरत हासिल हुई, मगर अफसोस महल के रिलीज होने से 2 माह पूर्व 10 अगस्त 1950 को संगीतकार खेमचंद प्रकाश 42 वर्ष की अल्पायु में इस संसार से विदा हो चुके थे।

0: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार खेमचंद प्रकाश पर, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब जयंत पात्रीकर को दीजिए इजाजत।
1: आज के फनकार।

0: श्रोते हो, आताच आपण सरफरोश या चित्रपटातलं गीत ऐकलं. कुमार सानू आणि अलका याज्ञिक यांचा स्वर होता, समीर यांची शब्दरचना आणि जतीन ललित यांचं संगीत. श्रोते हो, इथे घेऊया एक छोटीशी विश्रांती.
1: फूल खिलते हे बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवा होता है. दिल की बातों को होठों से कहते हैं, पर एक दूसरों की मन की बातें भी तो रेडियो से ही सुनवाई और सुनी जाती है.

सुना देते हैं। सजना संवरना स्त्रियों का अधिकार है, खासतौर पर जब मौसम सुहाने हो तो सजना और भी मन को भाता है। बिंदिया, काजल, कजरा, गजरा, पायल, मेहंदी, चुनर, ये सब श्रृंगार के साधन है। हरे कांच की चूड़ियां बड़ी सुहावनी लगती है, पर इन्हें किसी का दिल समझकर आहिस्ता आहिस्ता हाथों में डालिए। चांद जैसे मुखड़े पर बिंदिया सजाइए, जब बिंदिया चमकेगी आंखों में कयामत ढाने वाला काजल होगा, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचाकर धानी चुनरी पहन जब जाओगी तो साजन कहेंगे ही ना, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए। क्या पता ये भी कह दें, तेरी बिंदिया रे के आए हाय तेरी बिंदिया रे। तो सज धज कर आइएगा जरूर विविध भारती का कार्यक्रम सुरीला सफर में। ये आज की इबारत है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने पढ़ी और बहुत सारी बातें उन्होंने श्रृंगार के बारे में लिख करके भेजी है। एक साथी हमारी लिख रही है कि वाह क्या खूबसूरत इबारत है, आज सावन की दूसरी सोमवारी स्त्रियां सोलह श्रृंगार, हरी चूड़ियां, हरी साड़ी, मेहंदी, आलता से सजे हाथ पांव, हाथ में फूलों की डलिया, जल भरा कलश लेकर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करने के लिए मंदिरों में जा रही है। भगवान भोलेनाथ का और माँ गौरी का खूब श्रृंगार किया गया है, आज उसी श्रृंगार की बात सुरीला सफर में। एक साथी हमारी लिख रही है कि भारतीय संस्कृति में नारी का श्रृंगार केवल बाहरी रूप को सजाना नहीं है, ये संस्कार सौभाग्य, पारिवारिक परंपरा और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। सोलह श्रृंगार स्त्री के जीवन के अलग अलग चरणों और उसकी पहचान को दर्शाते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक महोत्सव भाग्य का प्रतीक, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, पति की लंबी उम्र की कामना और वैवाहिक बंधन को दिखाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा, चूड़ियां, बिछिया और पायल शरीर के एक्यूप्रेशर बिंदुओं पर असर डालते हैं, ये शरीर में ऊर्जा को संतुलित रखते हैं। भारतीय परंपरा में नारी को शक्ति या लक्ष्मी का रूप माना जाता है, श्रृंगार उसी दिव्य सम्मान को प्रकट करता है। सजना संवरना स्त्री के मन में खुशी और सकारात्मकता लाता है, परिवार और समाज के उत्सवों में उल्लास और जुड़ाव का माध्यम बनता है। जी, आपने स्त्री के श्रृंगार की बातें की और जब श्रृंगार की बात आती है तो अक्सर श्रृंगार को स्त्रियों से ही जोड़ करके देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, पुरुष भी तो अपना श्रृंगार कर सकते हैं, वो भी अपने आप को सजा संवार सकते हैं, बालों को अच्छी तरह से उन्हें कटवा करके और जिस तरीके से भी आपको पसंद हो वो स्टाइल, और चेहरे पर भी आजकल तो पुरुष भी जाते हैं पार्लर में और वो भी अपना श्रृंगार करवाते हैं, तो श्रृंगार सभी का अधिकार है, लेकिन हाँ स्त्रियों से इसे खास तौर पर जोड़ करके देखा जाता है। तो और भी हम इस विषय पर बातें करेंगे और कुछ सवाल भी हैं आज हमारे, तो वो भी हम आपसे पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले सजने संवरने का, सजना के लिए जो गीत है वो आपको सुनवा देते हैं। सौदागर फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज़, गीत और संगीत रविंद्र जैन का, कौन सी अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये आप बताइए।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सुरीला सफर कार्यक्रम में। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ मंजू द्विवेदी। आज की इबारत आपको पढ़ के सुना दे। विविध भारती के फेसबुक पेज पर हमने पोस्ट किए, बहुत सारे श्रोताओं ने पढ़ ली है, और जिन श्रोताओं ने फेसबुक पर जाकर इस इबारत को नहीं पढ़ा है तो उनके लिए हम पढ़ के

सजने संवरने की प्रक्रिया या सजने संवरने का जो जज्बा है उसको कितनी खूबसूरती के साथ इस गाने में बयान किया गया। गीत और संगीत ये रविंद्र जैन का है तो उनकी तारीफ तो हमें जरूर करनी होगी। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि पुरुष भी श्रृंगार करने से पीछे नहीं है, बालों में स्टाइलिश जेल, चेहरे पर हर तरह के मेकअप, मसाज, फेशियल, अच्छे कपड़े और क्यों ना रहें। जब नायिका सजेगी तो नायक को भी सजा रहना चाहिए। असल में तो नायक ही नायिका को सजाता संवारता है। इसकी नायिका सुंदर दिखे और नायिका भी इसलिए सुंदर होना चाहती कि नायक उसकी खूब खूबसूरती का व्याख्यान करे। ये प्यार और समर्पण का एक रूप है। जी हाँ, सजना संवरना ये सभी का अधिकार है। एक हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि आज आपकी जो इबारत है, मेरी धर्म पत्नी पर कल ही सार्थक हुई जब हम बाबा अमरनाथ जी के दर्शन के बाद श्रीनगर कश्मीर में डल लेक में शिकारे में हम बैठे थे, जहां धर्म पत्नी ने कश्मीरी सलवार कुर्ता पहना था, बिंदिया, काजल, पायल, कश्मीरी चुनरी आदि साधनों का श्रृंगार किया हुआ था। श्रीनगर का शाम का मौसम तो सुहाना था ही, मैं शिकारे में ये गीत भी गा रहा था, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। वाह क्या बात है, कितना सुनहरा वो वातावरण रहा होगा। और आपने इसको पूरी एकदम डिटेल जानकारी आपने दी है, धन्यवाद आपका। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि आज हमारे बीच परिपूर्णता के लिए श्रृंगार रस में सजे गीतों की माला होगी। जिस प्रकार सावन के आने से प्रकृति धीरे धीरे अपने को संवारने लगती है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, पूरे शबाब पर है, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे सभी बड़े खुश नजर आते हैं। नारी मन भी इन्हीं सावन के पूरे सोलह श्रृंगार में रची बसी होती है। और कुछ गीतों का इन्होंने जिक्र किया है। एक साथी हमारी लिख रही है कि सजना

ना, हमें हमेशा से अच्छा लगता है। शायद इसलिए नहीं कि कोई हमें देखे, बल्कि इसलिए कि आईने में खुद को देखकर मन थोड़ा मुस्कुरा दे। सावन आए, हरी चूड़ियां खन के माथे पर बिंदिया सजे और बालों में गजरा महके, तो लगता है जैसे छोटी छोटी खुशियों ने आकर हमें फिर से थोड़ा सा संवार दिया हो। जी हाँ, ये बड़े मुद्दे की बात है कि सजना संवरना ये दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने मन के लिए भी बहुत जरूरी है। जब हम आईने में देखते हैं, अपने आप को खूबसूरत देखते हैं, तो मन वाकई में प्रफुल्लित हो जाता है और आत्मविश्वास भी मन के अंदर आता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात करते हैं। मौसम सुहाना हो तो सजना भी अच्छा लगता है। जुदाई फिल्म का ये गाना है, और हाँ, ये जो सौदागर फिल्म का ये गाना है, पद्मा खन्ना पर फिल्माया गया। आपके जवाब हम तक पहुंच गए, उसके लिए धन्यवाद। और अब जुदाई फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया, ये आप हमें बता सकते हैं।

जितेंद्र और रेखा पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि आजकल तो पुरुष वर्ग भी पीछे नहीं, 16 श्रृंगार में से कुछ श्रृंगार तो वो भी सजना सवरना करते ही हैं, पीछे नहीं है वो। और एक एक साथी ये लिख रहे हैं कि सावन में तो हर कुंवारी लड़कियां भी सजती है, पर शादी के बाद हमारे जमाने में बहू को इतना ज्यादा सजना संवरना पड़ता था, भारी साड़ी, उसके पल्लू, सिंदूर और उतनी ही भर भर के हाथ में चूड़ियां, हर समय सज धज के रहना, और उसके बाद जब रोटी बनाते समय या काम करते समय उन चूड़ियों से इतनी दिक्कत होती थी कि बाद में धीरे धीरे आदत हो जाती है। सजती संवरती है आजकल की लड़कियां भी, बहुएं भी, पर उनका स्टाइल हमारे जमाने से अब बहुत भिन्न हो गया है। साड़ियों की जगह सलवार सूट, रंगीन चुनरिया हो गई है, चूड़ियों की जगह एक एक कड़े हो गए हैं, झटपट वाली मेहंदी हो गई है। और एक दिन मिलकर सावन मिलन पूरा हो गया, पूरा सावन संपन्न हो गया। एक साथी लिख रही है कि मेरी बात करूं तो पहले मैं भी इतनी फैशन में नहीं रहता था, लेकिन वाइफ के कहने पर अब मैं सुधर गया हूं। चलिए, अच्छी बात है कि आप भी थोड़ा सज धज कर रहते हैं। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि नारी की खूबसूरती उसके श्रृंगार और व्यवहार दोनों पर निर्भर रहती है। अगर वह कितना भी श्रृंगार कर ले, लेकिन उसका व्यवहार परिवार और समाज में उचित नहीं है तो सब बेकार है। इसलिए दोनों का सामंजस्य बना रहना बहुत जरूरी है। ये जो आपने बात कही है, ये 100% की बात कही है। जी हाँ, श्रृंगार अपनी जगह जरूरी है, लेकिन व्यवहार की सुंदरता भी उतनी ही आवश्यक होती है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपकी सुंदरता भी देखी जाएगी और उसे पसंद किया जाएगा। लेकिन आपने बहुत श्रृंगार किया, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन व्यवहार ठीक नहीं है तो आपकी वो सुंदरता किसी काम की नहीं रह जाएगी। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी कि ज्योतिष शास्त्र में हरा रंग बुद्धि और संतुलन के कारक हैं, बुध ग्रह से जुड़ा है। हरा श्रृंगार करने से मानसिक शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जी, हमारा जो अगला गीत है ये हरे रंग से संबंधित है और इसीलिए हमने आपकी ये बात अभी इस वक्त पढ़ी है। पढ़ना तो हम आपकी सारी बातें चाहते हैं। आप हमें बताइए कि सावन के महीने में हरे रंग का इतना महत्व क्यों है, क्या महत्व है इसका? हरे रंग की चूड़िया, हरे रंग की चुनर और बाकी भी जो श्रृंगार के साधन हो, उसमें ज्यादातर जो है हरे रंग का चुनाव किया जाता है, तो इस बारे में आप हमें बताइए। और जिन लड़कियों की अभी नई नई शादी हुई है और वो अपने ससुराल से मायके आई है, तो वहां से ससुराल से भी कुछ उनके लिए तोहफे भेजे जाते हैं, उसमें भी हरी रंग की चूड़ियों का चुनाव खास तौर पर किया जाता है, तो इस बारे में भी आप हमें बताइए। चलिए, अब हरे कांच की चूड़ियां इस फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, गीतकार और संगीतकार कौन है ये आप हमें बताइए। बिस्वजीत और नैना साहू पर फिल्माया गया ये गाना।

हरे कांच की चूड़ियां इस फिल्म का गाना सुना, शैलेंद्र का लिखा हुआ, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आप श्रृंगार की बातें कर रही हैं, कभी हमारी पत्नी साथ थी तो हमें इस सावन में मेघों बिजलियों बरसात को देखते थकते नहीं थे, उसके साथ भीग भी जाते थे। आज ये हरियाला सावन हमें घर में बंद रहने को मजबूर कर रहा है क्योंकि वो चूड़ी बिंदी वाली नहीं रही। क्या कहें इस बारे में, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक हमारे साथी की ये बात है कि जब पति शाम को थका हुआ घर पर आता है तो घर पर पत्नी इंतजार करती है, अगर पत्नी सजी संवरी मिलती है तो अच्छा लगता है, सारी थकावट और परेशानी समाप्त हो जाती है और फिर शुरू होती है श्रीमती जी की फरमाइश, जो कि उनका हक है। एक साथी लिख रहे हैं कि सावन के महीने में हरा रंग, प्रकृति के सौंदर्य, सुख समृद्धि और भगवान शिव के प्रति अटूट शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सावन में हरे रंग का बहुत महत्व है। और एक साथी ये लिख रही है कि सावन के महीने में हरा रंग प्रकृति में प्रेम, सौभाग्य और भगवान शिव की उपासना से जुड़ा है, बारिश के कारण चारों तरफ हरियाली छा जाती है और हरा रंग जीवन में नई शुरुआत, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं से भगवान शिव को प्राकृतिक वातावरण और बेलपत्र प्रिय है, हरा रंग प्रकृति का रूप है, इसलिए इसे पहनकर भक्त शिव के प्रति अपना प्रेम और भक्ति प्रकट करते हैं, इसलिए नारियां हरे रंग से श्रृंगार करके भोलेनाथ की पूजा करती है। धन्यवाद आपका। और हाँ, एक साथी ने ये बात लिखी कि क्षेत्रवार सजने सवरने की प्रथा अलग अलग है, यानी जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के कुछ अलग रिवाज होते हैं। सजी सवरी जो स्त्रियाँ हैं वो अलग अलग उनका जो रूप होता है वो दिखाई देता है। एक साथी लिख रहे हैं कि माथे की बिंदिया में सपनों की चमक, आंखों के काजल में अनकहे जज्बात है, चूड़ियों की खनक में बसी है यादें, पायल के रुंझुन में दिल की सौगात है। नारी जब स्नेह और मुस्कान से श्रृंगार करती है तो केवल उसका रूप नहीं संवरता, उसके साथ घर, आंगन, रिश्ते और कई बिखरे हुए एहसास भी खिल उठते हैं। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि सावन हरेक के लिए मनभावन होता है, धरती साथ श्रृंगार करके हरी भरी बन जाती है, उसी तरह महिलाएं हरी भरी साड़ी और हरे कांच की चूड़ियां पहनकर सजधज

कर उनके मुख पर निखार आता है। उसी तरह विविध भारती भी प्रसारण तरंगों पर निखार आ जाता है और गीत बज उठता है, चांद जैसे आकाशवाणी के मुखड़े पर विविध भारती जैसा सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान नहीं भूलेगा। जी आप मत भूलिए, याद रखिए विविध भारती का ये कार्यक्रम सुनते रहिए, विविध भारती के और अन्य कार्यक्रम भी है उन्हें भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक सवाल यहाँ करते चलते हैं कि जो नई नई बेटियों की शादियाँ हुई हैं और वो अपने ससुराल से मायके आई हैं, तो ससुराल से कुछ भेंट उनके लिए भेजी जाती है, उसे क्या कहा जाता है और उसमें खास तौर पर क्या होता है जो उन बेटियों के लिए, नई शादी जिनकी हुई है, जिनका पहला साल है, ये पहला सावन है, तो उनके लिए भेजा जाता है, तो इस बारे में आपके यहाँ क्या रिवाज है और क्या भेजा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, इस बारे में आप हमें बताइए। चलिए गैम्बलर फिल्म का गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, नीरज के बोल हैं, संगीत किसका है ये आप हमें बताइए।

दो रास्ते फिल्म का ये गाना हमने सुना। एक साथी हमारी लिख रही है कि मौसम कोई भी हो, त्योहार कोई भी हो, इस सवाल सदियों से सभी के मन में रहता है कि स्त्रियां इतना क्यों सजती है। घर में कितना भी काम धाम हो, वे सजने के लिए वक्त निकाल ही लेती है। स्त्रियों के अधिकार के अलावा एक मुख्य तथ्य यह है कि सजने से स्त्रियों में आत्मविश्वास की एक अलग अनुभूति प्रकट होती है। सलीके से लगाया गया काजल, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी में स्त्रियों का सौंदर्य निखर कर सामने आता है। सादगी के सौंदर्य में नहाई हुई किसी स्त्री को देखिए, वे नेह में नत और विनीत लगती है। किसी भी मौसम में नेह की तरह बरसती हुई स्नेह और संवेदना के रस में सिंचित नारी का असल सौंदर्य यही है। जी हाँ, सादगी का भी अपना आकर्षण होता है। ये सवाल हम आपसे करने ही जा रहे थे। सजना तो अच्छा लगता ही है, लेकिन सादगी का भी अपना आकर्षण होता है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, ये हमें बताइएगा। चलिए, अगला गाना परिणीता फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज और अरुण कुमार मुखर्जी का इसमें संगीत है। गीत किसका है ये आप हमें बताइएगा। कौन सी अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये भी बता सकते हैं।

भरत व्यास का लिखा हुआ ये गाना है और मीना कुमारी पर फिल्म आया गया है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज तो गानों की हरियाली ही हरियाली है जी, एक के बाद एक अपने लिस्ट तो सुपर हिट है, बहुत आभार विविध भारती का। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हर एक स्त्रियों को सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है, बिंदिया काजल कजरा गजरा पायल मेहंदी चुनर हरी हरी चूड़ियां ये सब पहनकर अपने आप खुश होती है और सोचती है साजन भी जरूर कहेंगे कि तेरी बिंदिया रे और गजरा लगा के गजरा सजा के, ये वो कहेंगी जी। धन्यवाद आपका। चलिए अब मधु फिल्म का गाना हम आपको, देखिए हमने सोचा था कि कौन सी फिल्म का गाना है ये आपसे पूछेंगे, लेकिन हमने ही बता दिया। मधु फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, नक्श लायलपुरी के बोल हैं, संगीत किसका है आप बताइए।

एक हमारी साथी ये बात लिख रही हैं कि लता मंगेशकर द्वारा गाया गया धानी चुनर मोरी हाय रे मधु फिल्म का ये गाना एक कालजयी गीत है। नक्श लायलपुरी द्वारा रचित इस फिल्म में चुनरी के माध्यम से यौवन और प्रेम की चंचलता को दर्शाया गया है। रोशन का संगीत और लता मंगेशकर की आवाज़ इस क्लासिक को और भी मनमोहक बना देती है। एक साथी लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र में श्रावण महीने से त्यौहार शुरू हो जाते हैं। पहले के ज़माने में स्त्रियाँ 9 गज की साड़ियाँ पहनती थी, बाद में वो 5 गज पर आ गई है। सज धज कर त्योहार में हर्षोल्लास के साथ वो शामिल होती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एक फूल चार कांटे इस फिल्म का गाना है, मुकेश की आवाज है, शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप बताइए।

सुनील दत्त और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गाना एक साथी की ये बात कि हमारे शहर में बरखा रानी बड़े प्यार से धरती का साथ सिंगार कर रही है और सुरीला सफर में हम नारी के आंतरिक और बाह्य साथ सिंगार की बातें कर रहे हैं, उस पर सुंदर से गीत सुन रहे हैं। ऐसी प्यारी अनुभूति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक साथी ये लिख रहे हैं कि सजने संवर लेख के लिए तो शहरों में आज पार्लरों की बाढ़ सी आ गई है, घर पर सस्ती महिलाओं का अब मन कहाँ भरता है। काम से फुर्सत मिलते ही बैग टांग कर पर्स लिए, एक हाथ में मोबाइल और जा पहुंचती शहर के व्यस्ततम पार्लर में और नख से शिखर तक पूरा मेकअप कराकर ही लौटती हैं। वे ये जो पतिदेव हैं बड़े नाराज हमें लग रहे हैं, तो श्रृंगार जरूरी है लेकिन सीमाएं तय करना भी बहुत जरूरी है। चलिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना अभिमान फिल्म से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत किसका है आप बताइए।

अभिमान फिल्म का ये गाना आपने सुना और इसमें बहुत खूबसूरत सा जो ये संगीत है ये एस डी बर्मन का संगीत है। बहुत सारे श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिख करके भेज दिए हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे बिल्कुल साथ साथ रहे, हर बात का आपने जवाब दिया और खूबसूरत आपके कमेंट्स थे और आपने ये भी लिखा कि गीत आपको पसंद आए, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारी मुलाकात होगी। आज का ये कार्यक्रम बस यहीं तक। आज्ञा दीजिए मंजू द्विवेदी को। नमस्कार।

0: अचीवमेंट मानता हूं, ऐसा नहीं है। ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
1: The Indian Meteorological Department, IMD, has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over East Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttarakhand and West Madhya Pradesh for the day. In Himachal Pradesh, intermittent rain has been continuing across most parts of the state this morning. More than 100 roads have been disrupted in several parts of the state due to landslides triggered by heavy rainfall. A report.
2: The monsoon has once again become active in Himachal Pradesh, with intermittent light rain being reported from several areas, including the state capital Shimla. According to the Meteorological Center Shimla, an orange alert for heavy rainfall has been issued for four districts of the state today: Kangra, Sirmaur, Mandi and Kullu. In view of the weather warning, people have been advised to exercise caution and stay away from rivers and streams. Meanwhile, landslides caused by heavy rainfall have disrupted traffic on more than 100 roads across the state. As many as 255 electricity transformers and around 20 drinking water supply schemes have also been affected. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
1: In Odisha, IMD has forecast formation of a fresh low-pressure area over the northwest Bay of Bengal around the 13th of this month. A cyclonic circulation is likely to form around tomorrow, bringing another spell of rainfall to the state. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appeals to opposition to allow Home Minister Amit Shah to make his statement and respond to issues raised by members without any disruption. Four bills, including Tribunals Reforms Bill 2026, introduced in Lok Sabha. Bill aims to improve transparency and efficiency in functioning of tribunals. Protesting students begin their march towards Jharkhand Assembly over alleged irregularities in recruitment examinations. Har Ghar Tiranga movement gains momentum as Tiranga rallies organized across the nation. Over 10 lakh people evacuated as Typhoon Dolphin batters parts of eastern China. World Lion Day being celebrated today, Prime Minister Narendra Modi says India's scripted successful conservation journey from 523 lions to 891 in last 10 years. And with that, we end the midday news.
3: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील, गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया, तीन अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
4: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
3: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की थी।
5: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात

0: रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
1: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया गया। दिन के 12 बजे तक स्थगित रहने के बाद सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता तथा नियुक्ति में एक रूपता सुनिश्चित करने और प्रशासन तथा कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 1957 के संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष रखा। ये विधेयक केरल राज्य के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके माध्यम से 1962 के संबंधित अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित हितधारकों से परामर्श पूरा होने के बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप देने के चरण में है। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच का आदेश देने में राज्य सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है। संसद भवन परिसर में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि यदि विद्यार्थी ये परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वे इससे मानने से क्यों इनकार कर रही है।
2: छात्र अडिग हैं कि हम तो जाएंगे और विधानसभा घेरेंगे। कई मांग है कि CBI जांच करा दो और JSSC के एग्जाम कैंसिल करा दो, जो दोषी है उनको पकड़ो और ED जांच करो, तो सरकार को क्या आपत्ति है।
1: भाजपा सांसद तरुण चुघ ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये नेता इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है, जबकि राज्य में उनके गठबंधन सहयोगियों की सरकार है।
3: मेरा निवेदन है कि छात्रों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए और मेरा सभी से निवेदन है, आंदोलन हम सबका राइट है, सत्याग्रह हम सबकी ताकत है, लेकिन हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना।
4: उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी विद्यार्थी आंदोलन का आज 17वां दिन है। विद्यार्थी विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: JPSC JSSC रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने तथा कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। मार्च के दौरान छात्रों ने पुरानी विधानसभा के पास बैरिकेडिंग पार की और 7वें तथा आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 छात्र अब भी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। तीनों JPSC सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन और तेज हुआ है। नविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
4: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए

0: अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। मंत्रालय ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कश्मीर के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अभियान की शुरुआत के साथ ही पुलवामा के त्राल इलाके, अनंतनाग, बारामुल्ला और कई दूसरी जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गयी, जिनमें युवाओं, छात्राओं, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। श्रीनगर में भी इस अभियान के तहत एक बड़ी तिरंगा रैली की तैयारी चल रही है। कश्मीर भर में जिला प्रशासन आने वाले दिनों में कई तिरंगा यात्राएं और जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्थानीय लोग भी इस अभियान के तहत तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उत्साह पूर्वक इसमें भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गांधी मैदान स्थित जेपी सर्कल से शुरू यह यात्रा कारगिल चौक के पास समाप्त हुई। यात्रा में स्कूली बच्चों, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स और आम लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। इस दौरान पूरा शहर तिरंगे के रंगों में सराबोर होने के साथ ही वंदे मातरम और हर घर तिरंगा के नारों से गुंजायमान रहा। इधर तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से इस अभियान के तहत जिला, नगर निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली यात्राओं में शामिल होने का आग्रह किया। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उधर नागालैंड के कोहिमा में आज भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड इकाई ने हर घर तिरंगा दोपहिया रैली का आयोजन किया। अभी अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1 लाख 55 हजार करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं, इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ, असम और मेघालय में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में कल तक बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा आज शाम दिल्ली के कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राज्य के कई हिस्सों में 100 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
4: हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और राजधानी शिमला सहित राज्य के

0: राह दी गई है। इस बीच भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण राज्य में 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 255 बिजली ट्रांसफार्मर और लगभग 20 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी

0: जिम्मेदारी से वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशेष प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। श्री भूपेंद्र यादव ने अपने आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता वैसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूहों के ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक बढ़कर 78,585 जबकि निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 24,599 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील। गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया। 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और आज विश्व सिंह दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदा बहार नगमे। कार्यक्रम का जो पहला गाना है तूफान और दिया। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, संगीत है वसंत देसाई का।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये मीरा भजन आपने सुना, संगीत वसंत देसाई का, फिल्म का नाम तूफान और दिया। और अब श्रीमती 420 इस फिल्म का गाना आपको हम सुनवा रहे हैं। गीता दत्त की आवाज़, जानेसार अख्तर के बोल, संगीत है ओपी नैयर का।

मुझको ये भी पता हंसी बहारें कहती है क्या, ना जाहे तुझको

0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। अब जो गीत आपके लिए लेकर आए हैं ये लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में शतरंज फिल्म का गाना है। राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है सी रामचंद्र का।

रंगीन रातें, ये फिल्म का नाम है जिसका गीत अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में। केदार शर्मा के बोल, संगीत है रोशन का।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी।
0: और बाकी जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: राजहट फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत।

लीजिए अब सुनिए सीआईडी फिल्म का गाना गीता दत्त की आवाज में, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना अब आपको सुनवाते हैं। पॉकेट मार फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और साथियों के आवाजों में राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, संगीत है मदन मोहन का।

आज के सदाबहार नगर में कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना अब आपको सुनवाते हैं। पटरानी फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत, शंकर जयकिशन का।

0: शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में ही नौकर भी थे, मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिन होती है, या पिता को लेती, या माता को, या अपने को। उनकी वृद्धा माता लगी नवजात कन्या को पानी पी पी कर कोसने।
1: अरे कलमू ही है कलमू ही, न जाने क्या करने आई है यहाँ। अरे किसी ऐसे के घर जाती जिसके औलाद नहीं है तो उसके तो दिन फिर जाते।
0: दामोदर दत्त दिल में तो घबराए हुए थे, पर माता को समझाने लगे।
2: अम्मा तेतर बेतर कुछ नहीं, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है, ईश्वर चाहेंगे तो सब कुशल ही होगा। गाने वालियों को बुला लो अम्मा, नहीं तो लोग कहेंगे तीन बेटे हुए तो कैसे फूली फिरती थी, एक बेटी हो गई तो घर में कोहराम मच गया।
1: अरे बेटा तुम क्या जानो इन बातों को, मेरे सिर तो बीत चुकी है, प्राण तो उसी में समाया हुआ है। तेतर ही के जन्म से तुम्हारे दादा का देहांत हुआ, तभी से तेतर का नाम सुनते ही मेरा कलेजा कहाँ पुटता है।
2: अम्मा इस कष्ट के निवारण का कोई तो उपाय होगा।
1: उपाय बताने वाले तो बहुत तेरे हैं, और पंडित जी से पूछो कोई ना कोई उपाय बता ही देंगे, पर इससे कुछ होता नहीं है। मैंने कौन से अनुष्ठान नहीं किए, पर पंडित जी की तो मुठिया गर्म हुई, यहां जो सिर पर पड़ना था वो पड़ ही गया, अब टके के रह गए पंडित जी, जजमान मरे या जिए उनकी बला से, उन्हें दक्षिणा मिलनी चाहिए बस। लड़की तो जरा देखो दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कों से हृष्ट पुष्ट है ये, बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतले पतले लाल लाल होंठ हैं, जैसे गुलाब की पत्ती, गोरा चिट्टा रंग तो देखो, लंबी सी नाक। कलमुई नहलाते समय रोई भी नहीं, ठुकुर ठुकुर ताकती रही, ये सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़े ही हैं, हाँ?
0: दामोदर दत्त के तीनों लड़के सांवले थे, कुछ विशेष रूपवान भी ना थे। लड़की के रूप का बखान सुनकर उनका चित्त कुछ प्रसन्न हुआ। बोले,
2: अम्मा तुम भगवान का नाम लेकर गाने वालियों को बुला भेजो, गाना बजाना होने दो, भाग्य में जो कुछ है वो तो होगा ही।
1: क्या बताएं, जी तो हुलसता ही नहीं, लेकिन करूं क्या।
2: अम्मा गाना न होने से कष्ट का निवारण तो होगा नहीं, कि हो जाएगा, अगर इतने सस्ते में जान छूटे तो न कराऊंगा ना।
1: अब बुलाए लेती हूँ बेटा, जो कुछ होना था वो तो हो ही गया।
0: इतने में सौर में से पुकार कर लक्ष्मी ने कहा,
3: अम्मा जी, ओ अम्मा जी, बहू जी कहती हैं गाना वाना कराने का कोई काम नहीं है।
1: भला उनसे कहो चुप बैठी रहें, बाहर निकलकर मनमानी करेंगी, 12 ही दिन है, बहुत दिन नहीं है, बहुत इतराती फिरती थी, ये ना करूंगी वो ना करूंगी, देवी क्या है देवता क्या है, मर्दों की बातें सुनकर वही रट लगाने लगती थी, तो अब चुप से बैठी क्यों नहीं रहती हैं। मेमे तो तेतर को अशुभ नहीं मानती, और सब बातों में जब मेमों की बराबर करती हैं तो इस बात में भी करें, कहो चुप बैठी रहे। और सुनो लक्ष्मी, जाओ जरा गाने वालियों को बुला लाओ, और हाँ सब जगह न्योता दे दो, और पड़ोस में भी कहती जाना, हाँ।

0: सवेरा होते ही लड़का सोकर उठा और आंखें मलता हुआ जाकर दादी से पूछने लगा,
1: बड़ी अम्मा बड़ी अम्मा, कल अम्मा को क्या हुआ बताइए ना।
2: अरे लड़की तो हुई है बेटा।
1: क्या? ओहो हो हो हो, पहजनिया पहनकर छुन छुन चलेगी। जरा मुझे दिखा दो दादी जी, थोड़ा दिखा दो ना।
2: अरे तो क्या सो?

0: और में जाएगा है, पागल हो गया क्या, चल बाहर चल, लड़के नहीं जाते अंदर।
1: लड़के की उत्सुकता न मानी, सौर के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और बोला,
2: अम्मा अम्मा जरा बच्ची को मुझे दिखा दो, एक बार दिखा दो अम्मा।
3: कहाँ जाते हो, बच्ची भी सोई है, चलो बाद में आना।
2: बच्ची को मुझे दिखा दो, जरा दिखा दो, गोद में लेकर देखूंगा।
1: लक्ष्मी ने कन्या उसे दिखा दी तो वहां से दौड़ता हुआ वो अपने छोटे भाइयों के पास पहुंचा और उन्हें जगा जगा कर खुशखबरी सुनाने लगा।
2: अरे छोटू सुनो, अरे छोटू सुनो, उठो उठो। अरे मैं अभी गुड़िया देखकर आ रहा हूँ।
4: कोई लगाओ भैया, नन्ही सी होगी?
2: अरे बिल्कुल नन्ही सी, एकदम गुड़िया जैसी है, गोरी तो ऐसी कि क्या किसी साहब की लड़की होगी। ये लड़की तो मैं लूंगा।
4: हम भी देखेंगे, कोई लगाओ।
2: देखा कैसी सुंदर है,
4: ऐसा के मन करके सोए, देखो ना भैया, हमको भी दिखाओ। नहीं नहीं, हमें तो हम भी देखेंगे।
2: खूब द्वार पर बारात आएगी, हाथी घोड़े आतिशबाजी, क्या मजा आएगा,
4: बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा।
1: मंझला और छोटा ऐसे मग्न हो रहे थे मानो वो मनोहर दृश्य आंखों के सामने है। उनके सरल नेत्र मनोल्लास से चमक रहे थे।
4: फूल आविया भी होंगे, ढेर सारे फूल होंगे, हम भी फूल लेंगे, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, कितनी सुंदर है।
1: छठी भी हुई, बरही भी हुई, गाना बजाना, खाना खिलाना, देना दिलाना, सब कुछ हुआ, पर रस्म पूरी करने के लिए दिल से नहीं, खुशी से नहीं। लड़की दिन दिन दुर्बल और अस्वस्थ होती जाती थी। माँ उसे दोनों वक्त अफीम खिला देती और बालिका दिन और रात नशे में बेहोश पड़ी रहती। जरा भी नशा उतरता तो भूख से विकल होकर रोने लगती। माँ कुछ ऊपरी दूध पिलाकर अफीम खिला देती। आश्चर्य की बात ये थी कि अब की उसकी छाती में दूध ही नहीं उतरा। यूं भी उसे देर से उतरता था, पर लड़कों की बेर उसे नाना प्रकार की दूधवर्धक औषधियां खिलाई जाती। बार बार शिशु को छाती से लगाया जाता, यहां तक कि दूध उतर ही आता था। पर अब की ये आयोजनाएं न की गईं। फूल से बच्ची कुमलाती जाती थी। माँ तो कभी उसकी ओर ताकती भी न थी। हाँ, लक्ष्मी कभी चुटकियां बजाकर चुमकारती तो शिशु के मुख पर ऐसी दयनीय, ऐसी करुण वेदना अंकित दिखाई देती कि वो आंखें पोंछती हुई चली जाती थी। बहू से कुछ कहने सुनने का साहस ना पड़ता था। बड़ा बेटा सिद्धू बच्चे को बाहर ले जाकर खिलाने के लिए बार बार जिद करता तो माँ उसे झिड़क देती।

0: तीन चार महीने हो गए। दामोदर दत्त रात को पानी पीने उठे तो देखा कि बालिका जाग रही है। सामने ताक पर मीठे तेल का दीपक जल रहा था। लड़की टकटकी बांधे उसी दीपक की ओर देखती थी और अपना अंगूठा चूसने में मग्न थी। चुप चुप की आवाज आ रही थी। उसका मुख मुरझाया हुआ था, पर वो न रोती थी न हाथ पैर फेंकती थी। बस अंगूठा पीने में ऐसी मग्न थी मानो उसमें सुधा रस भरा हुआ है। वो माता की ओर मुंह भी ना फेरती थी, मानो उसका उन पर कोई अधिकार नहीं, उसके लिए वहां कोई आशा नहीं। बाबू साहब को उस पर दया आई।
1: अरे बच्चे, कितनी प्यारी है गुड़िया। इस बेचारी का मेरे घर जन्म लेने में क्या दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर जो कुछ भी पड़े उसमें इसका क्या अपराध? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं। कुछ भावी अनिष्ट की आशंका के कारण उसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। माना कि कुछ अमंगल हो भी जाए

0: तो क्या उसके भय से इसके प्राण ले लिए जाएंगे? अगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? आ जाओ गुड़िया, आ जाओ।
1: उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वो हाथ पैर उछालकर गुंगुंग करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई।

0: प्रातःकाल दामोदर दत्त ने लड़की को गोद में उठा लिया और बाहर लाए।
1: अरे यहाँ क्यों ले आए, पड़ी रहने दो ना वहीं पर। ऐसी कौन सी बड़ी सुंदर है, अब आगन कहीं की, रात दिन तो प्राण खाती रहती है, अब मर भी नहीं जाती कि जान छूट जाए।
2: अरे बस भी करो, मैं से बाहर ले जाता हूँ।
0: दामोदर दत्त उसे बाहर लाए और अपने बच्चों के साथ बैठकर खिलाने लगे। उसके मकान के सामने थोड़ी सी जमीन पड़ी हुई थी, पड़ोस के किसी आदमी की एक बकरी उसमें आकर चरा करती थी, इस समय भी वो चर रही थी। बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा,
2: सिद्धू सिद्धू जरा उस बकरी को पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ला ला ला ला ला, लाओ तेरी बहन को दूध पिलाएंगे, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्नी से बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो।
0: सिद्धू को दिल लगी हाथ आई, उसका छोटा भाई भी दौड़ा, दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़े हुए सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुगलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा, आज शायद पहली बार उसकी शुधा तृप्त हुई थी। वो पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी, लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया।

कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। आज आपने सुना इस कहानी का पहला भाग। पिता का प्यार, भाइयों का दुलार मिलने से नन्ही बच्ची दिन ब दिन निखरती जा रही है। आगे क्या होता है इसके लिए सुनिए इस कहानी का दूसरा भाग। इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। कहानी में भूमिका सहित पात्रों का परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार जी श्याम, वृद्ध दादी रेणु चतुर्वेदी, दामोदर दीपक के सावलेकर, दामोदर की स्त्री स्वप्निल श्रीवास्तव, लक्ष्मी चंचल वर्मा, बाल कलाकार प्रज्वल सिंह, वेदांत सिंह और रुद्र सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, संकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: सोनाली, हमने बरखा फिल्म का ये गाना सुन लिया और उससे पहले हमने मुंशी प्रेमचंद की कहानी तेतर उसका पहला भाग भी सुन लिया। अगला भाग हम जरूर सुनेंगे अगले सोमवार के दिन, लेकिन अभी
1: अब ब्रेक लेते हैं।
0: हाँ

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है और हम फिर से हाजिर हैं सखियों से बातचीत करने के लिए। और अब अपने विषय पर आते हैं, उससे पहले तुम कुछ कहना चाहती हो?
1: एक हमारे साथी ने लिखा है
0: हाँ
1: मंजू जी कि इस समय मेरी धर्म पत्नी और मैं स्वयं डल लेक के सामने श्रीनगर के होटल के रूम में आनंद ले रहे हैं और अपने शहर अजमेर से लगभग 1,500 किलोमीटर दूर ये हमारी दीवानगी विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है। जो सुबह सुरीला सफर जो प्रोग्राम चल रहा था ना, तब भी हमारे इन्हीं श्रोता का फोन आया, मैसेज आया था, और उसमें भी उन्होंने कुछ इसी तरह की बात लिखी थी कि वो घूमने गए हैं और वहां पर जो नजारे हैं उसके बारे में लिखा था। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह के अपडेट्स जो है वो हमें
1: देते रहते हैं।
0: और आज हमारा जो विषय है, बुजुर्गों में बढ़ता हठीलापन, इसके बारे में भी हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें लिखी है। पहले कुछ बात हम अपनी यानी जो हम कहना चाहते हैं वो करते हैं कि कहा जाता है कि बचपन और बुढ़ापा जीवन के दो ऐसे पड़ाव होते हैं जहां व्यक्ति को सबसे अधिक स्नेह, धैर्य और अपनापन चाहिए होता है। फर्क केवल इतना ही होता है कि बचपन की जो जिद होती है वो मासूमियत भरी होती है, लेकिन बुढ़ापे की जो जिद होती है वो कई बार हट का रूप ले लेती है। यानी बच्चों की जिद तो हमें समझ में आती है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे हैं जिद तो करेंगे, लेकिन वही जब बुजुर्ग व्यक्ति करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं इन्हें ये कैसे हट कर सकते
1: हैं, ये क्यों
0: हैं?
1: ऐसा कर रहे हैं, है ना। वैसे मंजू जी आज के समय में ये शिकायत अक्सर सुनने को मिलती है कि हमारे पिताजी या माताजी बहुत जिद्दी हो गए हैं, लेकिन यदि इस व्यवहार के पीछे के कारणों को अगर समझा जाए तो पता चलता है कि उनका हट केवल स्वभाव नहीं बल्कि परिस्थितियां, अकेलापन और भावनात्मक असुरक्षा का ये परिणाम हो सकता है।
0: तो हमें इन कारणों को जानने के बारे में सोचना चाहिए या जानना चाहिए। तो हठीलापन वो स्थिति होती है जब व्यक्ति अपनी बात, अपनी आदत या अपने निर्णय पर अड़ जाता है और दूसरे के विचारों को स्वीकार करने में उसे कठिनाई महसूस होती है।

0: बुजुर्गों में ये जो व्यवहार, ये अक्सर उम्र, अनुभव, स्वास्थ्य और बदलते सामाजिक परिवेश के कारण दिखाई देते हैं। यानी कारण कोई भी हो सकता है,
1: बहुत
0: हमें
1: सारे
0: समझ,
1: कारण होते हैं ना।
0: हाँ, हमें समझना पड़ेगा।
1: अब जैसे बदलते समय में ये जो स्वीकारना है, इस बदलते समय में खुद को यानी उसके हिसाब से ढालने, इसने में इसमें उन्हें कठिनाई आ सकती है। और जिस समाज में उन्होंने जीवन बिताया, आज वही समाज पूरी तरह बदल चुका होता है। नई तकनीक है, नई सोच है, नई जीवन शैली है और नई पारिवारिक मूल्य उनके लिए सहज नहीं होते हैं।
0: बिल्कुल। और जैसे कि इसके बारे में अगर हम एक उदाहरण दें, तो हमारे घर में कोई भी बुजुर्ग हो सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी, ससुर, कोई भी हो सकते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि पूरा परिवार परिवार जो है वो रोज एक साथ बैठ करके भोजन करे। लेकिन होता क्या है कि आजकल जिस तरह से नौकरी लोग कर रहे हैं और उनका समय बहुत ज्यादा होता है नौकरी का, पढ़ाई है या अलग-अलग समय के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि परिवार टूट रहा है। जबकि अगर वास्तविकता की तरफ अगर हम नजर डालें तो यही कहा जा सकता है कि दिनचर्या सबकी अलग-अलग है, तो परिस्थितियां कुछ बदल गई हैं, लेकिन कुछ लोगों को इन परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है उनके हठीलेपन का।
1: पर हम एक उसमें बीच का एक रास्ता चुन सकते हैं कि भाई ठीक है, दादाजी का मन है, उनकी इच्छा है, तो हम हफ्ते में एक बार या दो बार तो हम कर ही सकते हैं,
0: हाँ, जब
1: कोशिश
0: संभव
1: तो कर
0: हो।
1: ही सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: तो होता यूं है कि लोग खाना खाने बैठे हैं, उस वक्त भी उनका ध्यान नहीं होता है कि खाने में नमक ज्यादा है या कुछ कम है या कुछ है, वो तो उस मोबाइल देखते हुए खाते
0: हाँ,
1: हैं।
0: और या तो टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए, जबकि पहले के समय में ऐसा नहीं होता था, पूरा परिवार साथ में बैठ करके एक दूसरे से बातचीत करते हुए भोजन करते थे, तो उसमें सुख दुख का बंटवारा भी हो जाता था, सब अपने मन की बात कहते थे, दिन दिन भर क्या हुआ उसके बारे में एक विश्लेषण होता था। तो वो एक बहुत ही अच्छा एक तरीका था जो अभी भी होना चाहिए, लेकिन जब नहीं होता है तो कई बार बुजुर्ग लोगों को ये बात ठीक नहीं लगती है।
1: तकलीफदायक हो जाती।
0: बिल्कुल।
1: और एक बात है मंजू जी, कि आजकल ना सम्मान थोड़ा सा कम देने लगे हैं लोग, कि पुराने जमाने में हमारे जो दादाजी हुआ करते थे, वे अपने पिताजी को या उनके दादाजी को बहुत सम्मान देते थे, उन्हें महत्व देते थे। हर काम में कोई भी बड़ा या छोटा काम करने से पहले उनकी सलाह ली जाती थी। पर आजकल हर व्यक्ति चाहता है कि जैसे ना कि खुद की जैसी इच्छा हो उसी तरह से व्यवहार करें। पर बुजुर्गों को थोड़ा सा अगर मान सम्मान दिया, उनसे पूछ परख लिया, अगर उनसे सलाह ले ली, तो उन्हें भी अच्छा लगता है। फिर ऐसी बात अगर उन्हें इस तरह से उन्हें शामिल नहीं किया गया तो वे नाराज हो जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि हमारे जमाने में कैसे बुजुर्ग बैठ कर आपस में पूछते थे, परखते थे, फिर कोई घर का निर्णय लेते थे। आजकल तो हमें सब काम होने के बाद में पता चलता है कि भी नया घर खरीदा जा रहा है, या फिर कोई शादी विवाह का मामला है, या फिर कोई अन्य मामला है, बच्चों के एडमिशन की भी बात हो तो भी, अरे हमें तो पूछा भी नहीं कि एडमिशन भी हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें ना बुजुर्गों को थोड़ी
0: चुभ जाती
1: तकलीफदायक हो
0: है।
1: सकती है।
0: बिल्कुल। और पहले के जमाने की तुम बात कर रही हो, तो जो बड़े लोग होते थे ना, एक बार अगर उन्होंने कह दिया कि ये होना है, यही होगा, तो हमारे जो पिताजी थे वो उनकी बात को बिना सोचे समझे मान लिया करते थे। लेकिन अब शायद थोड़ी सी परिस्थितियां बदली हैं और लोग ये सोचते हैं कि नहीं, नए जमाने या नई तकनीक या नए जो चाल चलन या जो तरीका जो है, चलन में जो तरीका है उसके बारे में शायद बुजुर्गों को इतना पता ना हो, तकनीक बहुत कुछ बदल गई है, तो हमें क्या करना है ये हमें ही ज्यादा अच्छी तरह से मालूम है। शायद इस सोच की वजह से भी हम पूछते नहीं हैं उनसे, और ये भी एक कारण है कि ये उनके मन में कुछ इस तरह की भावनाएं पैदा करते हैं बुजुर्गों के मन में कि अरे अब हमारी तो कोई आवश्यकता ही नहीं बची, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। और फिर वो अपने महत्व को शायद ये चाहते हैं कि हमारा भी कुछ महत्व बताने के लिए भी हो सकता है, ये एक कारण कि उनमें हठीलापन आ जाए।
1: और कभी कभी रूठ भी जाते हैं।
0: बिल्कुल। तो उन्हें मनाना ये भी हमारी
1: जिम्मेदारी
0: जिम्मेदारी होती है। गीत सुन लें यहाँ पर।
1: सुनते हैं गीत।

0: मंजू जी, हमारे एक सखी ने लिखा है, मैं इस समय बेटी के घर बर्लिन से सखी सहेली कार्यक्रम सुन रही हूँ। इस समय यहाँ 12:05 हुए हैं, इंडियन टाइम से 3.5 घंटे पीछे हैं।
1: क्या
0: कितना
1: बात
0: अच्छा लगता
1: है।
0: है ना।
1: हाँ, समय कोई भी हो, लेकिन अगर आप विविध भारती सुन रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी आनंद की बात
0: बात
1: है।
0: है।
1: चलिए, हमारा जो विषय है उस पर हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें लिखी। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज के मोबाइल और डिजिटल युग में सबसे बड़ा बुरा हाल जो है वो उम्र दराज और बुजुर्गों का है। जो कभी समाज के ऊपरी पायदान पर होते थे, उसे आज समाज कोई पूछता भी नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा जीवन का अनुभव उनके पास होता है और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहले समाज और परिवार के सभी बड़े काम जिन वडिलों को पूछे, वडिल यानी बड़े लोगों से पूछे बिना
0: बुजुर्ग
1: नहीं होता था, आज उनको पूछा नहीं जाता है। तो ये गलत है। अगर आप किसी भी घर में ऐसा होता है
0: तो वो
1: तो ये
0: गलत
1: नहीं
0: है
1: होना
0: जी।
1: चाहिए।
0: एक साथ ही लिखते हैं मंजू जी कि मैं भी 75 साल का बुजुर्ग व्यक्ति हूँ, मुझमें कोई हठीलापन नहीं है। घर के सभी सदस्य मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं उन सभी की खबर ख्याल रखता हूँ। सुबह विविध भारती पर जागो, सुबह हो गई सुनते हुए व्यायाम प्राणायाम कर लेता हूँ, शाम को इवनिंग वॉक करने चला जाता हूँ। इन सभी के अलावा विविध भारती फेसबुक पेज से कई श्रोता मित्र, उनसे जुड़ा हुआ हूँ मैं, और उनके लिए विविध भारती के लिए यही कहता हूँ कि तेरे पास आकर मेरा वक्त गुजर जाता है। 2 घड़ी के लिए नहीं, जिंदगी की हर घड़ी के लिए गम जाने किधर चला जाता है पता ही नहीं
1: क्या
0: चलता।
1: बात है। जिंदगी के प्रति हमारा जो नजरिया होता है ना,
0: जी,
1: वो बहुत महत्वपूर्ण होता है।
0: सकारात्मक होना चाहिए।
1: बिल्कुल, शारीरिक अवस्था चाहे कुछ भी हो, चाहे हम जवान हो या ढलती उम्र हो या बुढ़ापा हो, लेकिन जब हमारा नजरिया सही होता है तो जो शारीरिक परिस्थितियां हैं उनमें भी कुछ तो बदलाव आ ही
0: आ
1: जाता
0: ही
1: है।
0: जाता है, यानी और है ना, छोड़ देने की आदत कि ठीक है उनके हिसाब से चलो, या फिर है ना कि हर चीज को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है।
1: हमें भी ये सोचना चाहिए कि अगर हमारी उम्र इतनी बड़ी है तो परिस्थितियों में बदलाव आना स्वाभाविक बात है। उन परिस्थितियों से अगर थोड़ा सा सामंजस्य बनाने की कोशिश की जाए, अपने नजरिए को थोड़ा बदल दिया जाए कि हाँ, ये बदलाव तो होगा ही, हमारे जमाने में ऐसा होता था लेकिन इस जमाने में ऐसा हो रहा है, तो हमें भी इस समय के अनुसार चलना है, ये अगर सोच थोड़ी सी कर ली जाए तो भी बहुत सारी परेशानियों से हम बचे रह सकते हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं कि बढ़ती उम्र और

0: और बुजुर्गों का हठीलापन, भाई बढ़ती हुई उम्र एक तो वैसे ही खतरे की घंटी है, ऊपर से उनका हठीलापन, यह तो ऐसे ही हुआ जैसे सोने पे सुहागा नहीं। ये हम हमारा सोचना ऐसा है कि ऐसी बात नहीं है, सोने पे सुहागा वाली बात नहीं है ये। तो इन्होंने ऐसा कहा है कि हठीले लोगों से लगता है कि आप सभी का पाला पड़ा नहीं है, और इस तरह की बात लिखी है। हमारा इनसे ये कहना है कि बुजुर्गों के बारे में आप इस तरह से ये लिखना थोड़ा ठीक नहीं है, उन्हें थोड़ा आदर भाव से,
1: वे सिर्फ
0: उनकी
1: सम्मान चाह रहे
0: समस्या, बिल्कुल उनकी जो समस्या है उसकी तरफ हमारी नजर होनी चाहिए, और उसे कैसे दूर किया जा सकता है, और उनकी समस्या को समझने का प्रयास हमें जरूर करना चाहिए। कि जैसे कई बार होता है कि उम्र के हिसाब से हमारे जो सिर के बहुत सारे अंग होते हैं वो थोड़े से मंद पड़ने लग जाते हैं, सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लग
1: भूलने
0: जाती है,
1: लगते हैं।
0: भूलने लगते हैं। तो इस तरह के जो बदलाव आते हैं उससे भी ये समस्या होती है, हमें ऐसा लगता है कि हठीलापन है, जबकि ऐसा वो करते नहीं है, बल्कि ऐसा हो जाता है कि वो अपनी एक बात से चिपक जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो हठीलापन कर रहे हैं। तो हमें इन बातों को समझना होगा।
1: एक साथी लिखते हैं कि बुजुर्गों की जिद से निपटने के उपाय धैर्य से सुने, उनकी बातों को काटे नहीं, उन्हें महसूस कराए कि उनकी राय क्या में महत्वपूर्ण क्या है, सम्मान दे, उनके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाए, आदेश देने के बजाय प्यार से सुझाव दे, सक्रिय रखे उन्हें, सैर योग या पारिवारिक गतिविधियों में शामिल करे।
0: बिल्कुल, एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि बुजुर्गों का हठीलापन कोई बीमारी नहीं, बल्कि उनके जीवन के इस पड़ाव की एक पुकार है, जो अपनों का साथ और सम्मान चाहती है। उन्हें बदलने की कोशिश करने के बजाय उनके इस व्यवहार को धैर्य और प्रेम से संभालना ही एक परिपक्व समाज और परिवार की पहचान होता है। तो ये बहुत सारे श्रोताओं ने बातें लिखी है, और भी कोई बात अगर तुम्हारे पास है तो तुम पढ़ के बता सकती हो हमें।
1: जी, एक साथी लिखते हैं कि बढ़ती उम्र में बुजुर्गों में हठीलापन आना एक बहुत ही मुख्य समस्या है, आम समस्या है। मुख्य कारणों में बढ़ती उम्र तो है, इसके चलते मुख्य कारणों में स्वतंत्रता खो देने का डर होता है, शारीरिक या संज्ञात्मक कमी, डिमेंशिया के कारण पराधीन होने का मनोवैज्ञानिक डर बना हुआ रहता है, जिसके कारण हमें उनमें बच्चों की तरह हठीलापन का एहसास होने लगता है। खासकर जब बढ़ती उम्र में उनकी उपेक्षा होने लगती है, तब उनके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। इसलिए उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, प्यार से समझाकर उनकी भावनाओं का सम्मान करें।
0: बिल्कुल, अब हम संगीत का भी सम्मान करते हैं, एक गीत सुन लेते हैं।
1: सुनते हैं गीत।

0: ये फिल्म अगर देखी हो ना, तो इसमें जो ये गाना है ना, दादी अम्मा मान जाओ, तो दादी के जो पोते होते हैं वो किस तरह से बड़े प्यार से दादी अम्मा को मनाते हैं, तो वो वाकई में देखने लायक है।
1: और ऐसे ही अगर दादी को या दादा को मनाया जाए तो दादी या दादा रूठेंगे ही नहीं, बिल्कुल से मान जाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही प्यार और ऐसा ही सम्मान उनके प्रति होना बहुत आवश्यक है। अब कुछ खाने पीने की बातें हो जाए।
1: हाँ, आज हम
0: देखिए,
1: पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाले हैं।
0: हाँ, जो बसंती चावल और सौंदेश की हम बात कर रहे हैं, एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बसंती चावल पंजाब के बहुत सारे प्रांत में बसंत पंचमी के दिन बनाया जाता है, जिसमें बासमती चावल को घी में पकाते हैं और उसमें केसर, ड्राई फ्रूट और चीनी का सिरप मिलाकर बनाते हैं। और मैंने अपने पड़ोसी के घर ये खाया है और बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी के साथ एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि सौंदेश तो खाने के लिए मिठाई की दुकानों से मिल जाता है, बंगाली सहेली के घर पर बहुत सारे हमने बंगाली व्यंजन खाए हैं।
1: एक ने सौंदेश की रेसिपी लिखकर भेजी है, हमारे एक साथी ने। इसकी सामग्री और तैयारी, तो दूध 1 लीटर फुल क्रीम दूध लेना है, चीनी 3 से 4 बड़े चम्मच लेना है, इलायची पाउडर छोटा आधा चम्मच और नींबू का रस या सिरका 2 बड़े चम्मच दूध को फाड़ने के लिए।
0: बिल्कुल।
1: बनाने के लिए छेना बनाए, दूध को उबाले, फिर गैस बंद कर दे और नींबू के रस या सिरके में थोड़ा सा पानी मिलाकर धीरे धीरे दूध में डाले ताकि वे आराम से फट जाए। अब पानी निकाल ले। अब फटे हुए दूध को सूती कपड़े में छान ले और साफ पानी से धोकर अतिरिक्त पानी निकालकर उसे निचोड़ ले। अब उसको अच्छे से मैश करना है, उसको मसलना है। छेने को प्लेट में निकालकर हथेलियों से 7 से 8 मिनट तक चिकना होने तक मस ले। अब इसको पकाना है। इसमें अब पकाने के लिए इसमें पीसी चीनी डालना है मसलने के बाद में, और इलायची पाउडर मिलाए और मिश्रण को पैन में धीमी आंच तक 3 से 4 मिनट तक नरम होने तक पकाए और ठंडा करें और इसे आकार देना है। हाथों में घी लगाकर मिश्रण की छोटी छोटी लोइयां बनाए और मनचाहा आकार देकर पिस्ता से या फिर काजू या फिर बादाम से सजा दे।
0: बिल्कुल सही बात तुमने कही है कि किस तरह से सजाया जाए। लेकिन सोनाली, एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि पहले के जमाने में चाहे कोई त्योहार आए या कोई पर्व हो, कोई उत्सव हो, तो घर में ही सारी मिठाइयाँ
1: बनाई
0: बनती थी।
1: जाती थी।
0: हाँ, और वो बड़ी स्वादिष्ट भी लगती थी और कई कई दिनों तक हम उसे खाते थे।
1: खाते थे।
0: स्वाद मुंह से जाता ही नहीं था। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं कि बनाने का समय ही नहीं है, तो बस बाजार से ले आओ और खा लो।
1: और फ्रिज में रख दो।
0: हाँ, फ्रिज में रख दो। तो इसकी बजाय हम कभी कभी ये बनाने की अगर कोशिश करें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि घर की बनी हुई जो मिठाइयां होती है उसका स्वाद एकदम
1: कुछ
0: अलग
1: अलग
0: होता
1: ही
0: है।
1: होता
0: और शुद्धता की भी तो बात है ना, हमें पता है कि हमने कौन कौन सी सामग्री इसके अंदर मिलाई है, किस तरह से बनाया है। और अगर घर में बनता रहेगा तो ये जो रेसिपी है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये
1: ट्रांसफर होती है।
0: ट्रांसफर होती रहेगी। अन्यथा अगर आगे हम नहीं बनाएंगे तो आगे वाली
1: पता
0: पीढ़ी को
1: ही नहीं
0: तो पता ही
1: चलेगा।
0: नहीं चलेगा कि इन पर्वों पर, इन उत्सवों पर क्या बनता था हमारे घर में और कैसे बनाया जाता है। तो ये भी एक बात है ना।
1: और जब हम घर में बनाते हैं तो अच्छे हाइजीन का ध्यान रखते हैं,
0: हाँ।
1: साफ हाथ धोकर फिर हम ढक कर रखते हैं तो उसमें कुछ कीड़ा ना लग जाए, इसलिए हम कितना ध्यान रखते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये ध्यान रख के बनाना बहुत जरूरी
0: हाँ,
1: है।
0: और पहले के जमाने में तो मैंने ये भी देखा है कि जब ये ऐसे पर्व उत्सव आते थे तो अपने घर में क्या बना है, एक प्लेट भर के हम अपने पड़ोसियों के और रिश्तेदारों के घर भी देने के लिए जाते थे, और वहां से भी प्लेट
1: उनके
0: भर के
1: आते थे।
0: आता था, तो हमें ये पता चलता था कि वहां क्या बनता है और उनकी उसी जो मिठाई है उसका स्वाद वहां का कैसा है। अगर हमें ऐसा लगता था कि नहीं, ये हमारे स्वाद से ज्यादा अच्छा है, तो हम कोशिश करते थे कि
1: वैसा बनाए,
0: वैसा बनाया जाए।
1: यानी संस्कृतियों का भी आदान प्रदान पहले हुआ
0: बिल्कुल
1: करता था।
0: होता था। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि घर में इस तरह की रेसिपी बनाना
1: बहुत
0: चाहिए
1: सर
0: हमें। चलिए, बसंती पुलाव किस तरह से बनाया जाए, हमारे श्रोता ने ये बात लिख करके भेजी है। तो बसंती पुलाव एक पीले सुनहरे रंग का सुगंधित मीठा सा चावल का व्यंजन है। बसंती नाम इसके सुंदर पीले रंग से जुड़ा है। इसे विशेष अवसरों, पूजा और पारिवारिक समारोहों में बनाया जाता है। मुख्य विशेषताएं उन्होंने लिखी कि आमतौर पर सुगंधित चावल का इस्तेमाल किया जाता है। घी, हल्दी या केसर से इसका आकर्षक

0: और खुशबू आती है। इसमें किशमिश और काजू जैसे मेवे डाले जा सकते हैं। इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता आदि मसाले इसकी सुगंध बढ़ाते हैं और बंगाली भोजन में इसे अक्सर आलू की या दम या अन्य सब्जियों के साथ परोसा जाता है। और बसंती पुलाव की खासियत यह है कि इसमें मीठे और मसालेदार स्वाद का एक सुंदर संतुलन मिलता है। ये बात इन्होंने लिख करके भेजी है। और अगर इसकी रेसिपी भी हमारे साथियों ने लिख करके भेजी है तो वो भी हमें बताना चाहिए
1: कि कितना उसमें, यानी 2 कटोरी चावल है तो उसमें कितना तेल लेना है, फिर कौन से खड़े मसाले का इस्तेमाल किया जाता है, पानी कितना डालना है। इस तरह से भी अगर लिख के भेजे ना तो अन्य श्रोता जो घर में सुन रहे हैं उन्हें भी और भी सहूलियत होगी बनाने
0: बिल्कुल
1: में।
0: और यहाँ एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे इन व्यंजनों की इन्होंने बात की कि इसमें गर्म मसाले भी मिलाए जाते हैं और मीठा भी स्वाद आता है, तो जो गर्म मसाले एक संतुलित मात्रा में मिलाए जाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बड़े हितकर होते हैं। तो पहले के जमाने के जो भी मीठे व्यंजन, चाहे कोई भी और व्यंजन हो, तो उनमें स्वाद के साथ सेहत का भी पूरा खजाना छिपा हुआ था। तो ये इसलिए भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि घर में बनाएंगे तो हम इन बातों का भी ख्याल रखेंगे।
1: और है ना, घर में मंजू जी जो बनाए जाते हैं ना मौसम के हिसाब से बनाए जाते हैं। कि जैसे सर्दियों में गोंद के लड्डू सबके घर में बनते ही बनते थे उस जमाने में, फिर अभी बारिश का मौसम आएगा तो अभी मकई आ रही तो मकई के व्यंजन बनते ही थे, क्योंकि हम साल भर उस वक्त सब चीजें नहीं मिलती थी।
0: बिल्कुल, तो इन बातों का ख्याल रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलो गीत सुनते हैं।
1: सुनते हैं।

0: सोनाली, इस गाने में जो एक शब्द है ना, धीरे से तेरा ये मुस्काना, बड़ा प्यारा लगता है। घर में भी जब कोई अच्छी सी कोई मिठाई मम्मी दादी नानी के हाथ से बनती है और वो हमें पसंद हो, तो धीरे से एक मुस्कुराहट हमारे भी चेहरे पर आती है ना,
1: और वो खुशबू है ना, हाँ? वो खुशबू से ही हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। खाने के पहले, चखने के पहले ही उस खुशबू से जो घर में इतनी खूबसूरत महक आ जाती है ना, कि हम ऐसा, अरे वाह, आज

0: कुछ अच्छा खाने को मिलेगा हमें।
1: बिल्कुल।
0: और एक हमारी सखी ने भी लिखा है कि हम जो संदेश है वो हम गुड़ का हमारी सहेली बनाती है।
1: अच्छा,
0: तो आजकल जो हेल्दी ऑप्शन लोग चुन रहे हैं कि शक्कर के बजाय गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। उसमें स्वाद भी बहुत अच्छा होता है और सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और कहते हैं कि रसोई घर तो एक प्रयोगशाला होती है, जितने प्रयोग करेंगे उतनी नई नई बातें हमें पता चलेगी। चलिए, अब एक बात हमें ये पता चल गई कि कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है, तो अब हमें सखियों सखाओं से आज्ञा लेनी होगी। तो आज्ञा दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी
0: और सोनाली पाठक का नमस्कार।

एक बात हमें ये पता चल गई कि कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है, तो अब हमें सखियों सखाओं से आज्ञा लेनी होगी। तो आज्ञा दीजिए, आप सभी को मंजू द्विवेदी और सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। सेहतनामा कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर संजय बदादा से, जो एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, यानी ऐसे विशेषज्ञ जो हार्मोन्स, ग्रंथियों और एंडोक्राइन सिस्टम के विशेषज्ञ होते हैं। तो चलिए करते हैं बातें डॉक्टर संजय बदादा से। इनसे बातचीत आपके इस दोस्त यूनुस खान ने ही की है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और इस समय सेहतनामा कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय भदादा, जो चंडीगढ़ के पीजीआई में एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं और इस दिशा में उन्होंने बहुत सारा रिसर्च का काम भी किया है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद बुलाने के लिए विविध भारती से।
0: जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, जिसका नाम लेना ही बड़ा मुश्किल है, इसका काम क्या है?
1: सो अगर आपको मैं सिंपल शब्दों में समझाना चाहूंगा तो एंडोक्राइन डिपार्टमेंट या एंडोक्राइन जो ब्रांच है, हार्मोन से डील करती है।
0: जी।
1: और हार्मोन्स एक तरह से एक पदार्थ है जो आपके शरीर में है, जो बहुत सारी ग्लैंड्स इसको सिक्रीट करती है, और ये बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, लेकिन इसका असर बहुत ही सीरियस होता है। चाहे वो कम हो जाए तो भी उसका असर बहुत सिग्निफिकेंट होता है, और वो जरूरत से ज्यादा हो जाए तो भी उसका असर काफी गंभीर होता है। तो एक तरह से एक बैलेंस होना चाहिए हार्मोन के लेवल में। अगर हार्मोन्स के लेवल का बैलेंस खराब हो गया तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होंगे, और ये बहुत सारे हार्मोन्स है बॉडी के अंदर, और नए नए और निकलते जा रहे हैं जैसे जैसे रिसर्च हो रहा है, साइंस प्रोग्रेस कर रहा है वैसे वैसे।
0: महिलाओं में ये समस्या आमतौर पर ज्यादा देखी जाती है।
1: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। तो जो हमारे वार्ड में एडमिशंस होते हैं उसमें भी फीमेल पेशेंट्स ज्यादा होते हैं कंपेयर टू मेल पेशेंट्स के।
0: जी डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आने से पहले जब मैं आपसे कुछ बातें कर रहा था तो आपने कुछ दिलचस्प बिंदु उठाए थे अपने अनुभव के, और उसमें हार्मोन्स के जरिए हड्डियों पर होने वाले असर

0: आपने बातें की तो हम सब इसे सुनकर चौंक गए। तो मुझे लग रहा है कि क्यों ना इस कार्यक्रम में वो बातें आप बताएं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, हार्मोन्स आपकी हड्डियों पर सीधे असर करते हैं।
1: बहुत ही अच्छा सवाल है और इस सवाल का जवाब देने में मुझे बहुत मजा आएगा
0: जी,
1: क्योंकि ये जो एरिया आपने चूज किया या अपन ने जो चूज किया कि कैसे बोन्स हार्मोन्स को अफेक्ट करती है, तो इसके बारे में जो जानकारी, तो सबसे पहले मैं इसमें आपसे और हमारे विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हार्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। और सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे महिलाओं में महीना बंद हो जाता है जिसको हम मीनोपॉज बोलते हैं या महावारी का बंद होना बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हार्मोन्स बनता है उसका नाम होता है एस्ट्रोजन। वो एस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल एकदम कम आने लग जाता है और उसकी वजह से जो कॉमन सिम्टम्स तो महिलाओं में होता ही है कि जैसे चेहरे पे पसीना आना है, घबराहट होना है, मन उदास होना है, ये सारे सिम्टम्स उस टाइम पे होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन का इफेक्ट बोन्स पे भी बहुत होता है। तो अगर वो हार्मोन का जो एक पर्टिकुलर लेवल चल रहा है, अचानक हार्मोन्स लेवल गिर जाता तो उससे बोन्स वीक होना शुरू हो जाती है और उससे जो प्रॉब्लम होती है उसको हम बोलते हैं पोस्ट मीनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और ऑलमोस्ट 30-40% 50% महिलाओं को होता है और वो पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जबकि उस टाइम में उसको इंटरवीन करके उनकी बोन हेल्थ को अपन अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं।
0: क्या ये मुमकिन है कि इस तरह के मरीज पहले ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास जाएं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उनकी समस्या की जड़ क्या है और चीजें दूसरी दिशा में चली जाएं?
1: बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और उसका एक रीजन है कि आम पब्लिक को एंडोक्राइन डिपार्टमेंट के बारे में ज्यादा पता नहीं है, और ज्यादा पता है तो उनको यही जानते हैं कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मतलब है कि वो डायबिटीज को देखता है, थायराइड डिसऑर्डर्स को देखता है या मोटापे को देखता है। तो ये एक तीन डिसऑर्डर्स के लिए उनको पता है कि ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट देखते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो आपकी बोन्स की देख रेख करते हैं। उसमें जैसे एक हार्मोन का नाम होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, एक होता है वाइटामिन डी, एक होता है और भी कुछ कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो तो मैं यहाँ पे बताने का फायदा नहीं, पर ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं और इन दोनों इंपॉर्टेंट हार्मोन के बारे में जो इनका कैसे बनता है, ये कैसे काम करता है, इसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसके अंडरस्टैंडिंग जो पढ़ाई जाती है समझी जाती है वो एंडोक्राइन डिपार्टमेंट वालों के थ्रू होती है। तो अगर इससे कोई बीमारी होती है तो अगर आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का कंसल्ट करेंगे तो बीमारी जल्दी से पता चल सकती है और जल्दी से उसका इलाज हो सकता है, उसका आउटपुट बहुत अच्छा हो सकता है। पर आम पब्लिक को ये पता है कि ये हड्डी का बीमारी, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का इसमें कोई रोल नहीं है, बट ऐसा नहीं है। मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर आपको हड्डी का किसी भी तरह का प्रॉब्लम है आप एक बार जरूर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। और जैसे एग्जांपल के लिए हमने सुना है या देखा है हमने कि जो छोटे बच्चे होते हैं 2 साल के 4 साल के या जन्म के तुरंत बाद उनको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो इस तरह के फ्रैक्चर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं हॉर्मोन्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, तो उसका अगर टाइम पे पता चले तो उसका बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। ऐसे एक दूसरा डिसऑर्डर्स होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड की वजह से हार्मोन ज्यादा बन जाता है, तो उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर कैल्शियम ज्यादा बनता है, आपको रीनल स्टोन्स हो जाते हैं, आपको बार बार पथरी बनती है और आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं, पथरी का ऑपरेशन करके निकलवाते हैं, पर आप उसकी जड़ में नहीं पहुंच रहे और उसकी जड़ में नहीं पहुंचने की वजह से कि आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, उसका सही इलाज नहीं हो रहा, तो आपको प्रॉब्लम चलता ही रहता है और अल्टीमेटली इसकी वजह से किडनी खराब हो जाती है, आपको किडनी डिजीज होता है, किडनी फेलियर हो जाता है। तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आपको, जैसे मैंने एक और चीज बता दी एक तरह से कि आपको बार बार पथरी बन रही तो आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए।
0: ये यहां मुझे एक कंफ्यूजन हो रहा है और वो ये हो रहा है कि अब जैसे आपने कहा कि हड्डियों की समस्याएं हैं, तो अब अमूमन क्या होता है कि हड्डियों के डॉक्टर के पास व्यक्ति जाता है, तो कैसी परिस्थितियों में व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि ये पथरी की समस्या है तो मुझे किडनी स्टोन के डॉक्टर के पास नहीं जानी है, ये हड्डियों की समस्या है तो मुझे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास नहीं जाना है, ये यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है, ये डिसाइड कैसे होगा?
1: तो मैं सबसे पहले ये आपको बोलता हूँ, अपन एक ही क्वेश्चन में 3-4 आंसर पूछे हैं तो वन बाय वन लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको हड्डी के फ्रैक्चर के बारे में।
0: जी जी।
1: तो मैं ये बोलूंगा कि कोई भी फ्रैक्चर जो कि ट्रोमा की वजह से हुआ है, जैसे रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, जैसे और किसी वजह से चोट लग गई फ्रैक्चर हो गया, तो उसका बेस्ट डॉक्टर है ऑर्थोपेडिक सर्जन।
0: टूट फूट हुई है,
1: टूट फूट हुई उसके लिए जाना, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट का नाम ही हड्डी जोड़ तोड़

0: है ना, तो उनके पास जाना है। लेकिन सपोज आप बाथरूम में स्लिप कर गए,
1: जी
0: फ्रैक्चर हो गया, या हल्का धक्का लग गया, फ्रैक्चर हो गया, दो सीढ़ी स्किप हो गए, गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, या अपने आप फ्रैक्चर हो गया, इन सब के लिए आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो अगर फ्रैक्चर एक्सटेंसिव ट्रॉमा की वजह से हुआ तो आपको जाना है ऑर्थोपेडिक्स के पास, पर जो माइनर ट्रॉमा से फ्रैक्चर हो रहा है, अपने आप हो रहा है, फैमिली में फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, उसके लिए आपको जाना है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के।
1: बिल्कुल साफ कर दिया आपने
0: बिल्कुल।
1: इस मामले को।
0: अब उसके बाद दूसरी बात जो आती है कि आपने पूछा पथरी के बारे में,
1: जी
0: तो पथरी क्या होता है कि आमतौर पे पथरी 2-4% लोगों को पानी कम पीने की वजह से बन जाती है, पर अगर पथरी बार बार बन रही है, अगर जिंदगी में किसी को पथरी एक बार बन गई ठीक है वो बन सकती है, लेकिन आपको बार बार पथरी बन रही, बार बार दर्द हो रहा है, इमरजेंसी जाना पड़ रहा है, या आपके यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, वो आपको ऑपरेशन करके पथरी निकाल रहे हैं, 3 साल बाद फिर पथरी बन गया, इस तरह का तो प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब है कि वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि उसका इलाज लेना हो सकता है, लेकिन उसको क्यों बन रहा है उसका कारण जानने के लिए आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा।
1: जी, मेनोपॉज की बात चल रही थी और आपने कहा कि कुछ खास लक्षण होते हैं जिनसे हर महिला को उस समय गुजरना पड़ता है। अचानक वजन बढ़ जाना, वाटर रिटेंशन, है ना, ये तमाम चीजें हैं। तो क्या ऐसे समय में ये दौर अपने आप निकल जाता है या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की मदद लेनी जरूरी होती है?
0: इसका आंसर ऐसा हो सकता है कि बहुत बार जो ये सिम्टम्स होते हैं सभी महिलाओं को एक जैसे नहीं होते हैं,
1: जी
0: कुछ महिलाओं को पता भी नहीं चलता कि उनका मेनोपॉज हुआ और निकल गया, तो उनको लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है, बट उनके लिए करना है कि अच्छा एक्सरसाइज करना चाहिए। अक्सर अमूमन ये होता है कि हमारे घर परिवार में माताएं बहनें अपने आप को इग्नोर करती है अपनी हेल्थ को, और घर के सब लोगों के हेल्थ का ध्यान रखती है कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, बेटे ने खाना खाया कि नहीं खाया, पोते ने दूध पिया कि नहीं पिया, लेकिन वो अपने दूध पीने का ध्यान नहीं रखती है, अपना दही खाने का ध्यान नहीं रखती है, अपनी एक्सरसाइज नहीं करती, वो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अगर बिना किसी सिम्टम के लिए निकल जाए तो कुछ नहीं करना, अपना एक्सरसाइज चालू रखो, अपना कैल्शियम विटामिन डी का डाइट अच्छा रहो और वजन नहीं बढ़ने दो। लेकिन कुछ लोगों को बहुत मूड स्विंग होता है, अचानक पसीना आ जाता है, घबराहट होता है,
1: जी
0: और ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा, इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो इस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी से होते हैं, तो इस तरह के लोगों को आपको कंसल्ट करना चाहिए विदाउट टाइम वेस्टिंग। जैसे हम हमारे मैं एक इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ, तो हमारे जो रेसिडेंट्स आते हैं उनको पढ़ाने के लिए जब बात चलती, तो किसी महिलाओं की हिस्ट्री लेनी होती है, तो मैं उनको पहला एक सवाल पूछता हूँ कि उनको उनके महीने के बारे में आप जरूर पूछें कि माहवारी कैसी चल रही है। माहवारी ठीक चल रही है तो उनको कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने का चांस है, इसलिए हम बोलते हैं कि वुमेन्स के अंदर माहवारी रेगुलर होना एक बैरोमीटर ऑफ हेल्थ है। अगर आपकी माहवारी ठीक चल रही है तो आपका हेल्थ बिल्कुल ठीक है, और हमने ऐसा देखा भी हमारे घर परिवार में, बचपन में मम्मी कहती थी कि अरे महीना एक महीना भी चूक गया तो आगे लग गया तो घर वालों को टेंशन रहता है ये क्यों हो रहा है, होना नहीं चाहिए, तो सेम चीज है यहाँ पे भी। वो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उस हिस्ट्री से बहुत सारी डिजीज आपको पता चल सकती है। अगर किसी का महीना गड़बड़ हो रहा है तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर से बहुत कॉमन होता है,
1: तो डॉक्टर के पास तुरंत जाए।
0: बिल्कुल जाना चाहिए, बताना चाहिए ये, और बहुत सारी चीजें शक्ल देख के डायग्नोज कर सकते हैं हम।
1: तो इस बारे में बात करेंगे कि शक्ल देख के आप कैसे डायग्नोस
0: बिल्कुल
1: करते हैं।
0: बिल्कुल
1: बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि आप कहीं नहीं जाइएगा,
0: बिल्कुल
1: पहले डॉक्टर साहब से एक गाने की फरमाइश करते हैं, उसके बाद शक्ल देख के कैसे आप मरीज पहचानते हैं ये बात होगी।
0: हाँ, तो हम इसमें माताओं बहनों की बात कर रहे हैं, तो एक अच्छा फेमस गाना है, फूलों का तारों का सबका कहना है मेरी एक बहना है,
1: क्या
0: तो
1: बात, हरे रामा हरे कृष्णा का ये गीत आनंद बख्शी की बोल, आर डी बर्मन की तरह सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, ये तो बहन को समर्पित गाना, और आप इस गाने से पहले कह रहे थे कि आप चेहरा देखकर मर्ज भांप लेते हैं, ये तो बड़ी चमत्कारिक बात
1: और
0: है।
1: बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली मैं जब उदयपुर मेडिकल कॉलेज में ग्रेजुएट था तो हमारे प्रिंसिपल होते थे डॉक्टर सूरवीर सिंह
0: जी जी
1: तो उनके बारे में ये फेमस था कि वो इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतने अच्छे डॉक्टर कि जब मरीज उनके कमरे में घुसता तभी बीमारी बता देते हैं।
0: अरे गजब।
1: तो अब वो
0: ऑब्जर्वेशन
1: ऑब्जर्वेशन उस टाइम हमारा इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि ये कैसे बता देते बीमारी। लेकिन जब मैं एंडोक्रिनोलॉजी के अंदर मेरा सुपर स्पेशलाइजेशन किया तो मुझे पता चलता है कि हाँ, कुछ ऐसी बीमारियां हमारी है जो हम बता सकते हैं कि ये मरीज अंदर घुस रहा है, इसको ये बीमारी होने की संभावना है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि हम 100% बता देंगे, ऐसा नहीं, लेकिन 80% 90% बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन को ये बीमारी होने की ज्यादा संभावना, इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे।
0: जी जी,
1: जैसे अभी आपने एक दो बीमारियां होती है कि ऑस्टियोपोरोसिस का एग्जांपल देता हूं, बोन की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई पर्सन जिसको कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, कोई हिस्ट्री नहीं है ट्रॉमा की, और वो ऐसे झुक के चलने लग जाए, आगे झुक करके चलने लग जाए
0: जी,
1: तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका स्पाइन का हाइट कम हो गया।
0: अच्छा,
1: उसका स्पाइन का हाइट कम होने की वजह से वो आगे झुक गया, तो ये बीमारी क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस है। और आपने बहुत बार देखा होगा अपने आस पड़ोस में महिलाएं बहुत झुक जाती है, हम जनरली ये समझते हैं तो उम्र के हिसाब से हो गया, ये कोई बीमारी नहीं है, बट वो एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी की वजह से हो गया। अगर उनका टाइम पे इंटरवेंशन किया जाए तो वो ऐसे नहीं झुकेंगे।
0: जी, कई बुजुर्गों को दिखाई उनकी कमर दोहरी हो जाती है, और ये पुराने जमाने में
1: ज्यादा होता था,
0: देखा जाता था।
1: और दूसरा बीमारी होता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, वो एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल।
0: जी जी,
1: तो वो हार्मोन जब ज्यादा बनता तो शरीर भारी हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, गोल हो जाता है, और कहीं पे छोट हल्का चोट लगी तो निशान बनने लग जाते हैं, नील पड़ जाती है। ये सारी बीमारियां आप बहुत बार शक्ल देख के बता सकते हैं इस पर्सन को ये बीमारी है।
0: कॉर्टिसोल तो हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस है ना?
1: ये बिल्कुल, कॉर्टिसोल स्ट्रेस का हार्मोन है कि अगर आपका जब भी स्ट्रेस होगा तो ये बढ़ जाएगा।
0: तो ये कम हो तब हैप्पी है आदमी।
1: हाँ, वो उसका ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए। जैसे कि मैं इसको लाइन को शायद मैं बार बार जब भी अपना डिस्कशनों को बोलूंगा कि हमारे सारे हार्मोन के लेवल ऑप्टिमम होने चाहिए, अगर आप बढ़ गया तो भी खतरनाक है। कोर्टिसोल कम हो गया आपका ब्लड प्रेशर चला जाएगा।
0: ओके।
1: हाँ, तो इसलिए हर चीज बैलेंस में चलती है, इसलिए एंडोक्रिनोलॉजी को हम बोलते हैं ब्रांच ऑफ डिसिप्लिन।
0: क्या
1: सब चीज वैसे रहना चाहिए,
0: अनुशासित
1: अनुशासित, जैसे डायबिटीज भी एक ऐसा बीमारी जिसमें अनुशासन रहना चाहिए।
0: हाँ,
1: अगर आप अपना खाना ठीक से नहीं करेंगे, आप

0: एक्सरसाइज ठीक से नहीं करेंगे, दवाई ठीक से नहीं लेंगे, तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन अगर आप ये तीन चीजों को प्रॉपर करेंगे तो आप जितना जी सकते हैं उतना जिएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: और चेहरा देख के कौन कौन सी चीजें समझ में आ जाती हैं?
0: और चेहरा देखने से जैसे कि हॉर्मोन्स होते हैं, जिन हॉर्मोन्स को मेल हॉर्मोन्स और फीमेल हॉर्मोन्स बोलते हैं,
1: जी
0: तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि महिलाओं के अंदर फेशियल हेयर नहीं होंगे,
1: जी
0: पर अगर महिलाओं में फेशियल हेयर आना शुरू हो गए तो इसका मतलब उनको ये पर्टिकुलर जो मेल हार्मोन्स का लेवल बढ़ गया है। तो वो मेल हार्मोन्स लेवल बढ़ने के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। वो कितना सीवियरिटी है, जैसे बहुत सारी महिलाओं में बहुत ज्यादा एक्सेसिव फेशियल हेयर आ जाते हैं, तो इसका मतलब वो कोई ट्यूमर हो सकता है जो कि ये हार्मोन ज्यादा बना रहा है, तो वो पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कि कोई पुरुष है उसके चेहरे पे बाल नहीं है, तो वो इसका मतलब उसके अंदर मेल हार्मोन है वो नहीं है, उसकी वजह से चेहरे पे बाल नहीं आ रहे हैं, तो वो हम बीमारी बता सकते हैं, कह सकते हैं कि इसको ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी। फिर एक हार्मोन होता है जिसको हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, वो आपकी
1: जी
0: ग्रोथ को रेगुलेट करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो जाए तो बंदा
1: 6 फुट के
0: सवा
1: ऊपर,
0: छह नहीं 7 फीट का हो सकता है, और चेहरा बड़ा हो जाएगा, हाथ बड़े हो जाएंगे। जैसे
1: अच्छा
0: आपने WWF में कुछ लोगों को देखा होगा, मैं नाम नहीं
1: जी
0: लेना चाहता हूँ, बट वो जैसे बहुत बड़े हो
1: हाँ
0: जाते हैं, हेल्थ लंबा चौड़ा, तो वो उनको बेसिकली एक तरह से वो ग्रोथ हार्मोन का एक बीमारी वो ज्यादा है, उसकी वजह से वो ज्यादा बढ़ गए हैं।
1: क्या बात। मध्य प्रदेश में एक पुलिस के व्यक्ति हुआ करते थे जो
0: हाँ
1: एशिया के सबसे
0: वो
1: लंबे,
0: एक पंजाब में भी कुछ है,
1: जी
0: वो भी है। और दूसरा उसका उल्टा है, अगर आप वो हार्मोन नहीं बना आपको तो आपका हाइट कम रह जाएगा। तो इसलिए फिर मैं बोल रहा हूँ हार्मोन ऑप्टिमम इज रिक्वायर्ड टू हैव ए नॉर्मल। अगर कम है ग्रोथ हार्मोन तो आपका लंबाई नहीं बढ़ेगा, अगर ज्यादा हो गया तो आपका बहुत लंबाई बढ़ जाएगा, वो भी ठीक नहीं। तो ये हर हार्मोन जैसे ज्यादा है तो अलग प्रॉब्लम करता है, कम है तो अलग प्रॉब्लम करता है, और नॉर्मल है तो ठीक रहता है। तो आप बहुत सारी चीजें इसलिए देख के पहचान सकते हैं कि इसको क्या पॉसिबिलिटी है बीमारी होने की।
1: बिल्कुल, बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई है। और यहां एक चीज जो हड्डियों से जुड़ी बातें हो रही हैं, हड्डियों और हार्मोन्स के रिलेशन की बातें, तो कुछ केसेस जो आपने देखे हैं जिनके जरिए हमारे सुनने वालों को मदद मिलेगी कि ये क्या सिम्टम्स थे और इनका क्या उपाय हुआ?
0: तो ऐसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ
1: जी
0: और उदयपुर मेडिकल कॉलेज से मेरी अपनी पढ़ाई करी। तो जब मैं किसी कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे गया तो मेरे टीचर थे डॉक्टर DC शर्मा साहब, तो उन्होंने कोई पेशेंट उनके पास गया तो उनको समझ नहीं आया, उन्होंने बोला कि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, तो संजय तुम अगर ठीक समझते हो तो इसको वहाँ भेज देता हूँ। वो वहाँ पे आ गए पेशेंट, जब उन पेशेंट का हमने हिस्ट्री लेना शुरू किया तो पता कि मैं पूरे सब जगह में गया हूँ, दिल्ली बॉम्बे सब जगह, पर कोई बीमारी का ठीक से पता नहीं चला। तो फिर वो पेशेंट हमारे पास आ गया, वो जब आया था स्ट्रेचर पे आया था, हमने उसको एडमिट करा और उसको हम धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हम 1-1.5 महीने में उसका बीमारी का हम पता लगाए कि ये बीमारी है, और दुनिया में उसकी बीमारी केवल उस टाइम में 25 केसेस थे, केवल पूरी दुनिया के अंदर
1: इतनी दुर्लभ।
0: इतनी दुर्लभ। अब दुर्लभ बीमारी है तो उसका बारे में ज्यादा पता नहीं है, दुर्लभ बीमारी उसका इलाज भी नहीं है, तो
1: जी
0: इलाज कैसे किया जाए।
1: जी
0: तो हमने उसको स्टडी करके एक प्लान किया कि भाई ये दवाई कोशिश करना चाहिए, और भगवान की दया से गॉड्स ग्रेस वो बीमारी के अंदर वो दवाई लग गई और चल गई, और वो पेशेंट हमारे पास से लेट के आया था और चल के गया। फिर उसका छोटा भाई भी आया, उसको भी यही बीमारी थी, वो भी ऐसे ही चल के गया, और उसके जब हिस्ट्री पूछा तो उसकी मदर, उसकी मामी मामा जी, उनको भी ये बीमारी थी। तो एक तरह से एक काइंड ऑफ जेनेटिक हो सकता है या एक एनवायरनमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो पेशेंट को हमने ग्रोथ हार्मोन से ट्रीट किया और वो बिल्कुल ठीक होके गए।
1: महिलाओं में इस तरह के कुछ केसेस जिनका जिक्र आप करना चाहेंगे?
0: महिलाओं में इस तरह की बीमारियों में अगेन मैं अगर बोन्स की बात करूंगा तो क्या होता है कि मीनोपोज के टाइम पे बोन्स खराब होना शुरू होता है,
1: जी
0: और अगर उनको पहले से कोई बीमारी अंडरलाइंग चल रही बोन की तो वो एकदम एक्सजर्बेट हो जाती है।
1: ओ
0: जैसे आपको ऑलरेडी मीनोपोज में कैल्शियम कम होना शुरू हो जाएगा, एस्ट्रोजन चला गया, और आपको ऑलरेडी कुछ बीमारी है, जैसे हमारे एक पेशेंट थी सीलिएक डिजीज जिसको हम बोलते हैं व्हीट एलर्जी, मे बी नॉर्थ इंडिया में काफी कॉमन है जहाँ पे व्हीट मेन डाइट है, साउथ इंडिया में उतना कॉमन नहीं होगा। तो उसमें उस लेडी को क्या हुआ कि 45 साल की उम्र में जब महीना बंद होना शुरू हुआ तो उसको अचानक बोन्स वीक होना शुरू हो गई, और बोन्स इतनी वीक हो गई कि वो बेड पे आ गई और उसकी मालिश करने से उसकी फ्रैक्चर हो गया हाथ का,
1: ये
0: मालिश
1: मालिश
0: करने
1: करना
0: से।
1: कितना गलत हो गया।
0: हाँ मतलब मालिश करने से ही फ्रैक्चर हो गया, मतलब हल्का ही किया होगा ये तो पता नहीं, बट उससे फ्रैक्चर हो गया, तो उसका बोन्स इतना वीक हो गया।
1: ओहो
0: और जब उसको हम भर्ती करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उसमें पता चला कि उसको व्हीट एलर्जी है, और व्हीट एलर्जी पहले भी होगी लेकिन जब महीना बंद

0: वीट एलर्जी और महीना बंद दोनों साथ जुड़ गए, तो एक और एक दो की जगह एक और एक 11 हो गया, और उसको फ्रैक्चर हो गया। उसको फिर एडमिट करा और उसके इन्वेस्टिगेट किया, उसका कुछ नहीं किया हमने, उसका केवल वीट बंद कर दिया।
1: जी
0: और वो 3 महीने बाद में हमारे पास चलती हुई आई, तो पहले हम उसका वजन कम हो रहा उसके लिए इलाज कर रहे हैं, उसके मोटापे का इलाज करना पड़ रहा है।
1: तो ऐसे दिलचस्प मामले भी आते हैं, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि हार्मोन्स का असर हड्डियों पर भी पड़ता है, जो आज के इस कार्यक्रम का फोकस है।
0: बिल्कुल।
1: और डॉक्टर साहब, अब एक गाने पर फोकस किया जाए, आपकी पसंद का अगला गाना बताइएगा।
0: तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था।
1: क्या बात है, ये गाना सुनते हैं, चांद सी महबूबा हो, आनंद बख्शी साहब के ये बोल हैं, सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, बातें हो रही हैं हार्मोन्स और हड्डियों के कनेक्शन की, और आपने बताया कि किस तरह से बीमारी कुछ और है और उसको समझा कुछ और जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: ये आम आदमी के लिए भी उतनी बड़ी चुनौती है जितनी डॉक्टर्स के लिए?
1: या एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कुछ हद तक, पूरे तरह से नहीं पर कुछ हद तक, बिकॉज बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज होती है जिसके बारे में लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं होता है
0: जी,
1: या उसका प्रॉपर रेफरल समझ में नहीं आता। उसका रीजन ये भी हो सकता है, अगर बीमारी पता नहीं तो कैसे रेफर करें, किसको रेफर करें। तो ऐसा डॉक्टर्स में भी हो सकता है, आम आदमी में तो होता ही है पर डॉक्टर्स में भी हो सकता है। और दूसरा, बोन्स की प्रॉब्लम का एक दूसरा दिक्कत उसमें है कि एक कहावत आपने सुना होगा, राजस्थानी में बोलता हूँ मैं, बहुत मामे के भांजे भूखे रह जाते हैं। समझ गए? मतलब उसमें ऐसा होता है कि भाई वो भांजा उस मामा जी के यहाँ खाना खा लेगा, उसके यहाँ खा लेगा, उसके यहाँ खा लेगा और अल्टीमेटली भूखा रह जाता है कोई। तो उसी तरह से हड्डी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट देखते हैं इसको। अब जैसे आपने बताया मीनोपॉज का जिक्र कर रहे, तो अभी ऑब्वियसली मीनोपॉज पे महिला गायनी वाले के पास जाएंगी
0: जी।
1: फ्रैक्चर की बात करें तो पर्सन ऑर्थोपेडिक्स वाले के पास चला जाएगा, और हो सकता है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास आ जाए, या कभी कभी वो रिमेटोलॉजी की बीमारी से कंफ्यूज हो जाता है कि जोड़ में दर्द हो रहा है,
0: संधिवात जैसी
1: कुछ
0: चीज़
1: है। तो उस तरह से बंदा कंफ्यूज रहता है, उसको खुद तो पता नहीं होता कहाँ जाना होता है, तो वो फिर चक्कर लगाता रहता है।
0: जी।
1: तो उसमें वो अगर सही डॉक्टर के पास पहली बार ही पहुंच गया तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं पहुंचा घूमते घूमते लास्ट में उस डॉक्टर के पास आया जिसका ये बीमारी है, तो उसमें उसको काफी टाइम लग जाता है और बीमारी काफी बढ़ भी जाती है, तो उसको फिर नियंत्रण करने के लिए भी थोड़ा और ज्यादा टाइम लग जाता है।
0: एक सही मार्गदर्शन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मेरे को लगता है आपका ये जो प्रोग्राम आप जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हॉर्मोन्स एंड डायबिटीज, इससे हमारे श्रोताओं को काफी समझ में आएगा और वो सही जगह पे सही डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, हड्डियों की बातें तो हमने की, अब दो चीजों की बातें मुझे लगता है कि करना चाहिए, एक तो डायबिटीज की बात और दूसरी थायराइड की बात।
1: बिल्कुल,
0: ये बताइए कि किन हार्मोन्स से ये तब्दीली आती है और किसी को थायराइड उभर के आता है, दोनों तरह के थायराइड, और इसको पहचाना कैसे जाए अर्ली स्टेज पर?
1: थायराइड हार्मोन का भी ऐसा होता है, ऑप्टिमम रहना चाहिए
0: जी।
1: अगर कम हो गया लेवल तो

0: उसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म,
1: जी
0: और अगर लेवल ज्यादा हो गया उसको हम बोलते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म।
1: दो तरह के हो
0: दो
1: गए
0: तरह के हो गए। अब इनमें हाइपोथायरॉयडिज्म काफी कॉमन होता है, ज्यादा कॉमन होता है, और जैसा कि हमने पहले भी बताया महिलाओं में काफी कॉमन होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, और उसका प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि पहले आज के कुछ सालों पहले ज्यादा उसके बारे में ध्यान नहीं होता था। और उसकी वजह से क्या होता था कि माँ को तो प्रॉब्लम है पर बच्चे को भी प्रॉब्लम होता, होने वाले बच्चे को, तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड का टेस्टिंग और उसका इलाज बहुत ही जरूरी होता
1: ये
0: है,
1: बहुत याद रखने वाली बात
0: बहुत
1: है
0: ही
1: सभी
0: जरूरी होता
1: श्रोताओं
0: है।
1: के लिए।
0: बिल्कुल। फिर हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में होता है, उसके सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड होते हैं, कि जैसे थकान हो रहा है, सुस्ती हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, किसी को भी कभी भी हो सकते हैं, तो उसमें समझ में नहीं आता कि क्या है। लेकिन इसमें बात यह कि अगर वो सिम्टम लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं, कि आपको कब्ज रह रहा है, अभी 3 महीने 6 महीने से चलता जा रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ बीमारी हो सकती है, उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म एक बीमारी हो सकती है। जैसे कि आपका चेहरे का एक, भगवान ने बहुत ही फीचर्स हमारे शार्प बनाए, अगर इन पूरी दुनिया में अरबों लोग हैं लेकिन किसी की शक्ल एक दूसरे से बहुत कम मिलती है, तो ये जो कंप्यूटर भगवान ने जो बनाया चेहरे का कंप्यूटर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक दूसरी शक्ल नहीं मिलती है। लेकिन जब थायराइड डिसऑर्डर्स होता है, अगर वो बहुत एक्सटेंसिव हो जाता है, मतलब बहुत ही हाइपोथायरॉयडिज्म एक्सटेंसिव ग्रेड में पहुंच जाए, तो उसमें एक शक्ल एक धुंधली हो जाती है, जैसे आपने फोटो कोई खींचा है, फोटो हिल गया है, जो
1: जी
0: धुंधला हो जाता है, तो वो एक चेहरे की जो शार्पनेस है वो चली जाती है,
1: नूर चला जाता है।
0: या नूर चला जाता है, तो वो एक हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में सिम्टम्स कॉमन होते हैं, लेकिन अगर लंबे हो तो आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है। फिर
1: महिलाओं में भी इस समस्या को लेकर
0: महिलाओं में दूसरी समस्या, उनका अगर महीने में कुछ गड़बड़ हो रही है,
1: जी
0: तो ये थायराइड की बीमारी की वजह से हो सकती है, तो इसलिए उसको जरूर से टेस्ट करना चाहिए, कर कर बड़े तो, और इलाज होने से बिल्कुल ठीक हो जाता है।
1: क्या थायराइड की दवा जीवन भर खानी पड़ती है?
0: बहुत ही कॉमन सवाल है, सब लोग पूछते हैं। मैं ये बोलूंगा कि यस, 99.9% हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो 99.9% लोगों ने, हमने एक ओपीडी में एक सील बनवा के रखी है
1: जी
0: कि लाइफ लॉन्ग फॉलोअप,
1: अच्छा वो सील ही बना
0: सील
1: ली
0: लगा दी, क्योंकि हम मरीज को कभी कभी बताना भूल जाते, तो सील लगा दी कि भैया उस पे रेड कलर में उनको पढ़ने को मिल जाता है कि इसमें लिखा हुआ
1: जी
0: लाइफ लॉन्ग फॉलोअप, मतलब बराबर लेना है।
1: बहुत ध्यान रखना
0: कुछ,
1: है।
0: हाँ, कुछ एक पेशेंट्स को रिवर्स हो जाता है, बट जनरली नहीं होता है,
1: ये
0: क्यों,
1: कौन सा वाला है? हाइपो।
0: हाइपोथायरॉयडिज्म बात कर रहे
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: अब दूसरा इसका कारण क्या होता है, भगवान ने जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाई, उसकी कैपेसिटी बहुत बनाई है,
1: जी
0: जब तक उस ग्लैंड का 90% हिस्सा खराब नहीं होता है, काम करना बंद नहीं करता, तब तक वो बीमारी नहीं होती है।
1: ओके
0: तो अगर आपका जब बीमारी हो रहा था, इसका मतलब 90% पर्टिकुलर ऑर्गन, पर्टिकुलर ग्लैंड की सेल्स ने काम करना बंद कर दिया, तो केवल 10% बची है। अब वो 10% में कितना रिवाइव हो सकता है कुछ भी करने से, उसका कहना थोड़ा मुश्किल होगा। तो
1: जी
0: इसीलिए 90% डैमेज होने में टाइम भी लगता है, और अगर एक बार 90% डैमेज हो गया, आपको सिम्टम्स आ गए, तो फिर आपको ट्रीटमेंट लगभग लाइफ लॉन्ग ही लेना
1: और
0: पड़ेगा।
1: इस 90% डैमेज होने के सिम्टम्स नहीं होते
0: वो धीरे धीरे होते हैं, कुछ कुछ
1: जी?
0: होना शुरू हो जाते हैं, बट पूरा 100% नहीं होते हैं, कुछ कुछ होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या हो गया, आजकल जो एक इंपॉर्टेंस बढ़ गया रेगुलर चेकअप का, ईयरली चेकअप में आपको उस बीमारी का पता चल जाता है कि आपका ये बीमारी एबनॉर्मल आना शुरू हो गया, और एबनॉर्मल आना शुरू होने के बाद में आप उसके पीछे लग करके इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो पता चल जाएगा ये तो आपको टाइम से ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, तो फिर उसका दवाई का मात्रा भी उतना नहीं लेना पड़ेगा, नहीं तो जब 90% डैमेज हो गया तो दवाई का मात्रा भी ज्यादा लेना पड़ेगा। ये हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। अब रहा हाइपरथायरॉयडिज्म, जब ग्लैंड ज्यादा, तो इसमें उल्टा हो जाता है कि इसमें पसीना कम आता है, उसमें पसीना ज्यादा आता है, उसमें वजन थोड़ा बढ़ सकता है, उसमें काफी कम हो जाता है, उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन होता है, उसमें डायरिया होता है,
1: जी
0: इसमें कलर हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में उसमें कलर गहरा हो जाता है, डार्कनिंग हो जाती है, और इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म में आंखें बाहर आना शुरू हो जाता है, मोटी हो जाती है, उसमें आंखों पे काफी असर होता है, तो वो भी एक उसका सिम्टम है। तो बहुत सारे लोगों का आंखें प्रोमिनेंट होता है, तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है, थायरॉयड हार्मोन के एक्सेस की वजह से हो सकता है।
1: तो ये सब जो सिम्टम्स हैं उन पर एक तो नजर रखनी चाहिए, और दूसरा
0: बिल्कुल,
1: आपने जोर दिया कि सालाना चेकअप करा लेना सबसे
0: हाँ,
1: अच्छा उपाय
0: मतलब
1: है।
0: जैसे 35 साल की उम्र के बाद में अभी गवर्नमेंट भी बोलती है कि भाई आपको कुछ कुछ टेस्ट कराने चाहिए, तो
1: जी
0: ऐसे ही खास तौर से उनकी पारिवारिक हिस्ट्री

0: थायराइड की बीमारी की, महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान है, या कुछ जो सिम्टम्स हमने आपको बताए वो लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं, तो उन लोगों को अपने थायराइड का टेस्ट जरूर कराना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, थायराइड की बात हमने की, डायबिटीज की बात अब कीजिए।
0: बिल्कुल, उसके बिना तो ये टॉक पूरा नहीं होना चाहिए।
1: तो बताइए कि ये जो मामला है।
0: डायबिटीज एक तरह से कभी किसी जमाने में इसको राज रोग बोलते थे।
1: जी,
0: क्या बोलते थे? राज रोग, मतलब ये
1: मतलब
0: राजा
1: बहुत
0: महाराजाओं
1: शाही
0: में होता
1: लोगों
0: है
1: को होता
0: शायद।
1: था।
0: अभी ये क्या हो गया? आम रोग।
1: जी
0: अब हर
1: हाँ,
0: किसी को डायबिटीज हो रहा है।
1: इंडिया एक तरह से डायबिटीज कैपिटल
0: आप ये
1: बनता जा
0: कह
1: रहा है।
0: सकते हैं कैपिटल बनता जा रहा है। ऑब्वियसली हमारे श्रोताओं के इसके कारण सबको पता है, बट
1: जी
0: मैं जस्ट इसको कोरम को कंप्लीट करने के लिए बोल देता हूं कि किस वजह से डायबिटीज ज्यादा हो रही है।
1: जी
0: तो एक कंसेप्ट होता है कि कुछ बीमारियां होती है जेनेटिक्स की वजह से होती है, कुछ एनवायरनमेंट की वजह से होती है। ये
1: बिल्कुल,
0: नेचर एंड नर्चर।
1: नर्चर।
0: तो आपके एनवायरनमेंट में जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो तो आपके एक्सपोजर से हो रही है, लेकिन आपको जीन्स की वजह से जो प्रॉब्लम हो तो पिताजी माताजी से आपको जो मिले उसकी वजह से होगा। तो इन जनरल हिंदुस्तान में ये जेनेटिकली वी आर डायबिटीज के लिए प्रीडिस्पोज्ड हैं, जेनेटिकली। और उसका बेस्ट आइडिया, जैसे आप दुबला पतला पर्सन है, उसको भी थोड़ा सा तो पेट निकला होगा, वैसे दुबला पतला लेकिन पेट थोड़ा निकला होगा। तो जो पेट निकला हुआ होता है ये एक तरह से आपका खराब हेल्थ का निशानी है। मे बी आज के 40 साल पहले लोग बोलते यार बहुत ही हेल्दी बंदा है, मोटा अच्छा खासा हट्टा कट्टा है वो, तो उसको हम हेल्दी बोलते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग हो गया वो हेल्दी नहीं, वो अनहेल्दी है।
1: जी,
0: तो जब इस तरह का ये जो पेट आगे निकल गया, ये जो प्रॉब्लम है, ये एक तरह से प्रीडिस्पोज करता है डायबिटीज को। तो हम सब लोगों के लिए एक मैसेज है कि आपका पेट नहीं निकलना चाहिए, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि जो वजन बढ़ता है सबसे पहले यहीं बढ़ता है और सबसे बाद में यहां से जाता है। जो ट्रेन वाला सिस्टम है, जो ट्रेन लेट हो गई उसको लेट होती रहती है। तो ये भी इस तरह से, तो वजन नहीं बढ़ना चाहिए। अब वजन बढ़ना कॉमन हो गया आजकल, क्यों? कि हम खान पीन है उधर, जैसे सिस्टर स्विगी और मदर जोमेटो 24 आवर्स खाना सप्लाई करता
1: अरे
0: है
1: गजब।
0: ना?
1: जी,
0: तो रात को 11 बजे भी खाना खा रहे हैं, 12 बजे भी खाना खा रहे हैं हम लोग,
1: ऐप के
0: तो
1: जरिए खाना मंगा रहे
0: ऐप
1: हैं।
0: के जरिए खाना मंगा रहे। तो उससे क्या हो रहा है कि आपका खाने का टाइमिंग गड़बड़ हो गया। वो खाने का टाइमिंग गड़बड़ होने की वजह से आपका वजन बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो अपने माइथोलॉजी में, इंडियन माइथोलॉजी में ऐसे बोलते हैं कि सूरज के टाइम पे खाना खाना चाहिए, जब सूर्यास्त होने के बाद खाना नहीं खाना। जैसे खास तौर से जैन समाज वगैरह में ऐसा होता है कि वो लोग सूर्यास्त हो गया तो खाना नहीं खाते, और सुबह में टाइम पे। तो उसका मतलब ये होता है कि आप खाना खाने के बाद आपको घूमने फिरने का टाइम रहता है थोड़ा, तो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है। और आपने एक नया शब्द सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग,
1: जी, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत
0: वो
1: ज्यादा चल रहा
0: इस पे एक चीज कहना चाहूंगे, हम लोग ना अंग्रेजों से बहुत सीखते हैं, अपने आप से नहीं सीखते हैं, ठीक है?
1: जी
0: अब इंटरमिटेंट फास्टिंग हिंदुस्तान में कोई नई चीज नहीं है।
1: जी
0: जैसे रमजान रखते हैं तो हम लोग 12 घंटा खाना खाते, 12 घंटा भूखे रहते हैं,
1: हाँ
0: ठीक है? अब कुछ नवरात्र व्रत रखते हैं तो उसके
1: जी
0: अंदर आप दिन में खाना नहीं खाते हैं, आप फलाहार लेते हैं,
1: जी बिल्कुल
0: ठीक है? तो पहले से कंसेप्ट है। या हमारी दादी नानी जो व्रत उपवास रखती हैं, वो कॉमन है, उनको भी अमावस्या करेंगी, पूर्णिमा करेंगी, या और अलग अलग धर्म में अलग अलग तरह से होता है, मुझे वो दूसरों का उतना शायद पता नहीं। तो ऐसे फास्ट रखते थे तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती थी। पर अब क्या, जब अंग्रेजों ने बोला कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है तो हमने उसको लपक लिया भी, अब इंटरमिटेंट फास्टिंग होना चाहिए,
1: जी,
0: जबकि हमारे कंसेप्ट में पहले से ही
1: ऑलरेडी है।
0: इंटरमिटेंट फास्टिंग है। तो ये एक अच्छा चीज हो सकता है कि हम ये हैबिट डेवलप करें कि खाने का हम टाइम फिक्स करें कि हम 7 बजे बाद नहीं खाएंगे। जैसे कुछ कंट्री के अंदर डिनर टाइम होता है, अगर आप उसके बाद डिनर के लिए ऑर्डर करोगे तो डिनर नहीं मिलेगा आपको।
1: जी,
0: तो उसका रीजन ये है कि आपको अच्छा हेल्थ रखने के लिए खाना टाइम पे खाना चाहिए। तो ये एक चीज अच्छा आपके डे टू डे हैबिट में हम कर सकते हैं। और मैं अपने श्रोताओं को एक छोटा सा टिप दे रहा हूँ कि वो अगर अपना खाना शाम का खाना 7 बजे के पहले खा सकें और सुबह का खाना 8 बजे खाएं ब्रेकफास्ट से, तो आपका पूरा लगभग 12 से 14 घंटे आप भूखे रह गए। तो आप हर रोज इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो
1: क्या बात
0: और
1: है।
0: उसका बहुत अच्छा असर होने वाला आपके हेल्थ के ऊपर में। कोई अगर इस चीज को 15 दिन भी करके देखेगा तो उसका मुरीद हो जाएगा कि मुझे ये सिस्टम करना चाहिए।
1: आपने जो बताया उसमें लंच नहीं है ना, उसमें सुबह
0: उसमें
1: 8 बजे
0: लंच
1: एक
0: आप,
1: ब्रंच जैसा कुछ
0: हाँ
1: है।
0: नहीं उसमें आप लाइट लंच ले सकते हैं, कि जैसे
1: जी
0: आप ऑफिस में हैं तो आप ऑफिस में एक फ्रूट ले सकते हैं, एक सिंपल एक चपाती ले सकते हैं, या आधा एक सैंडविच ले सकते हैं, ऐसा लाइट रख सकते हैं। ब्रेकफास्ट ले लिया, फिर ऑफिस आवर्स में आप
1: कुछ ले लिया
0: कुछ
1: हल्का
0: लाइट ले
1: सा।
0: लिया, तो आपको 7 बजे फिर से भूख लग जाए।

0: तो फिर आप खाना टाइम पे खा पाओगे।
1: यही हो गई इंटरमिटेंट
0: ये
1: फास्टिंग,
0: इंटरमिटेंट
1: बारह बारह
0: फास्टिंग
1: तेरह घंटे
0: बारह
1: की।
0: तेरह घंटे होगी, आपकी सेहत बिल्कुल फिट रहेगी।
1: बिल्कुल। तो अब यहां एक गाना सुनते हैं
0: हाँ,
1: और उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
0: इसका गाना आपसे, चांद सा रोशन चेहरा।
1: क्या बात है, कश्मीर की कली फिल्म का ये गाना है,
0: बिल्कुल
1: ओपी नय्यर का संगीत। सुनते हैं
2: ये।

0: डॉक्टर साहब, आप एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, मैंने ठीक बोला ना?
1: बिल्कुल ठीक।
0: आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो शाखा है वो और क्या क्या चीजें देखती है?
1: बहुत ही बढ़िया सवाल है और मेरे को जवाब देने में बहुत मजा आएगा।
0: अच्छा,
1: एंडोक्राइनोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें मल्टीपल ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती है
0: जी,
1: और ये ग्लैंड्स टॉप से लेके बॉटम तक आपकी बॉडी में रहती है।
0: हाँ, ये बात हमें नहीं पता।
1: तो सबसे पहले मैं बोलूंगा तो ब्रेन में दो ग्लैंड्स होती है, तीन ग्लैंड्स होती है।
0: अच्छा।
1: एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस, और तीसरी ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड होती है उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जो आपका स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है।
0: अच्छा।
1: कि आप कितनी बजे उठ रहे हैं तो उसका क्या असर होगा, कितनी बजे सो रहे हैं तो उसका क्या असर होगा, ये सब कंट्रोल करती है। हाइपोथैलेमस होता है और एक पिट्यूटरी होता है, दोनों
0: जी
1: पेयरिंग में काम करते हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस एक तरह से पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है और ये करीब 6 हार्मोन सिक्रेट करती है ब्रेन से,
0: जी,
1: और ये 6 हार्मोन्स बाकी की बॉडी की रिमेनिंग ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड आता है, जिसमें आपका एड्रेनल ग्लैंड आता है जो कि किडनी के ऊपर होता है, जिसमें आपका ओवरीज होती है जो महिलाओं के अंदर अंडा
0: प्रजनन बनाती का काम है,
1: या और मेल में टेस्टिस होती है जो कि जहाँ से स्पर्म बनते हैं। तो इन सबको ये इसके ऊपर के थ्रू कंट्रोल करती है। तो एक तरह से आपका एक सिस्टम हो गया, एक हाइपोथैलेमस, एक पिट्यूटरी और फिर उसके बाद में सारी ग्लैंड्स।
0: तो पूरा शरीर कवर हो गया,
1: पूरा शरीर कवर हो गया। उसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो रह गई है, एक है पैराथायराइड ग्लैंड जो थायराइड के पास में होती है और उसका बोन पे बहुत इफेक्ट होता है
0: जी,
1: और एक पेनक्रियाज आपका जिससे डायबिटीज का रिलेशन है। इनका अभी ऊपर से कंट्रोल पता नहीं है, पर मेरा ऐसा मानना कुछ कंट्रोल होगा, हम सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, कुछ रिलेशन होना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि बाकी सब चीजें कंट्रोल हो रही तो ये कैसे कंट्रोल नहीं हो गया ऊपर से,
0: जी जी
1: ऐसा शायद होगा। तो ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, तो सारी की सारी पूरी बॉडी में है। तो अब बॉडी का कोई भी प्रॉब्लम होगा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास हो सकता है। इसलिए कभी कभी मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आपको कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही है, जो एमडी स्टूडेंट्स, उनको एक बार एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जरूर भेज देना। हो सकता है कि वो बीमारी वहां से पता चल जाए कि इनकी क्या बीमारी है।
0: बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपने पैंक्रियास का जिक्र किया। इससे जुड़ी बीमारियों के बारे में मैं आजकल यहाँ वहां काफी पढ़ रहा हूँ, क्या ये बढ़ रहा है?
1: तो पैंक्रियास का बीमारी सीधा सीधा डायबिटीज ही है एक तरह से, आप देखेंगे तो पैंक्रियास से रिलेटेड डायबिटीज है। पैंक्रियास का टाइप 2 डायबिटीज सबसे कॉमन है, तो डायरेक्टली उसमें नहीं होता, पर उसमें एक तरह से वजन बढ़ने से आपका जो इंसुलिन सिक्रीट होता है पैंक्रियास से वो इफेक्टिव नहीं रहता है। तो इसी तरह का कि आपके पास ताला लगा हुआ है, चाबियां बहुत सारी है पर कोई चाबी उसमें फिट नहीं हो रही है।
0: जी जी।

0: इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया तो आपको इंसुलिन तो बहुत है बॉडी के अंदर, लेकिन वो आपकी सेल में नहीं जा पा रहा है। क्यों? कि वो सही सिग्नल नहीं दे रहा वहां पे। ठीक है, ऐसे कमरे में जाना, आपको ताला की चाबी खोल के जाना, लेकिन आपके पास सही चाबी नहीं तो ताला नहीं खुलेगा। इसी
1: क्या
0: तरह
1: वजह
0: से
1: होती होगी इसकी?
0: इसकी वजह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वजह है कि वजन ज्यादा होना,
1: अच्छा,
0: डायरेक्ट रिलेशन है उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस का वजन ज्यादा होना से। और या फिर आप पेनक्रियाज को खराब कर लेते किसी कारण से, जो कि कॉमन है हमारी सोसाइटी में, अल्कोहल, उसकी वजह से आपका पेनक्रियाज खराब हो जाता है, तो उससे फिर वो आपका पेनक्रियाज का बीटा सेल्स डैमेज हो जाएगा, तो फिर इंसुलिन बनेगा ही नहीं। जब बनेगा ही नहीं तो आपको डायबिटीज हो जाएगा।
1: जी
0: टाइप 2 में इंसुलिन ज्यादा बन रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों ही हो रही है।
1: दोनों हो रही है, मतलब बैलेंस की जो आपने बात की थी
0: हाँ, फिर
1: वो
0: से
1: फिर से
0: बैलेंस
1: यहाँ आ
0: का
1: गया।
0: जरूरत है, बिल्कुल।
1: डॉक्टर साहब, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस किस किस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आता है? एक अधेड़ उम्र में पहुंचने के बाद जिस तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उससे महिलाएं कैसे निपटें, खासतौर पर ये
0: या
1: बातें बताइए।
0: अधेड़ उम्र में मैं ये बोलता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो रोल प्ले करता है वो मीनोपॉज में जो चेंजेज होते हैं वही महत्वपूर्ण है। और उसमें ऐसा देखा गया कि जैसे मन उदास रहना है, या काम में कंसंट्रेशन नहीं करना है, या आपको अचानक पसीना आना है, घबराहट होना है, धड़कन बढ़ जाना है, ये सारा कुछ होता है। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इन सब चीज़ों का एक तो जानना ज़रूरी है। बहुत बार पेशेंट्स को हम बोल देते हैं कि भाई आपको ये बीमारी है, चिंता करने का जरूरत नहीं, आप ठीक हो जाओगे, तो 50% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। कि यार पहले वो सोचें कुछ बड़ी बीमारी तो नहीं हमारे को, तो अगर उनको आप एक्सप्लेन कर देते हो कि भाई आपका बीमारी नहीं है, ये आपका जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं मोस्ट लाइकली आपका महीना बंद होने की वजह से हो रहे हैं, आप ठीक हो जाओगे, तो काफ़ी लोग ठीक हो जाते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम नहीं आती ज़्यादा। लेकिन कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, क्योंकि उनको थोड़ा सीवियरिटी ज़्यादा होता है, तो सीवियरिटी ज़्यादा, तो ऐसे लोगों को फिर आपको दवाई देना पड़ता है।
1: ये दवाएं हार्मोन्स की होती हैं।
0: हाँ, एक तरह से हॉर्मोन्स होते हैं, तो अगर बहुत पसीना आ रहा है, घबराहट, उसके लिए हॉर्मोन्स दे सकते हैं, बट वो भी एक प्रॉपर तरीके से सुपरविजन में होता है, तो इसमें गायनेकोलॉजिस्ट का भी काफ़ी रोल रहता है और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का भी रोल रहता है, तो ये दोनों मिलकर के इस तरह की बीमारी के लिए ट्रीटमेंट लिखते हैं।
1: क्या बालों का झड़ना जो है वो हार्मोन से जुड़ा हुआ है?
0: या फिर मैं आपको बोलूंगा कि ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ हॉर्मोन्स बहुत जरूरी है बालों के हेल्थ के लिए, क्योंकि बॉडी को क्या लगता है कि जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनका देख रेख करना ज़्यादा ज़रूरी है, न कि जो बाहर की सुंदरता है। बॉडी को बाहर की सुंदरता से लेना देना नहीं है ज़्यादा, तो
1: जी
0: आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो पहले हॉर्मोन्स या बॉडी अपने इंटरनल जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनका देख रेख करेगी,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और उसके बाद में बाहर की चीज़ों पर आएगी।

0: का आपका एक्सपीरियंस उतना होगा। आप कॉमन डिजीज तो देखोगे, देखोगे बहुत रेयर से रेयर डिजीज भी देखोगे, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। फ्यूचर में आपने एक कोई पेशेंट देख लिया जिसका ये प्रॉब्लम आपने डायग्नोज कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम में जैसे ही वो पेशेंट है आप पहचान जाओगे, यार ये पेशेंट तो इस तरह का हमने देखा। तो हमारा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस बहुत कई गुना ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जो लोग दूसरी जगह काम करते हैं जिनको उतना पेशेंट एक्सपोजर नहीं है।
1: जी,
0: तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो रेयर डिजीज आप डायग्नोज करते हो, आप ट्रीट करते हो, कि आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, ग्रेटिफिकेशन मिलता है कि यार हमने ये काम अच्छा किया है, तो उसमें बहुत मज़ा आता है। तो आपको इसके साथ साथ फिर उसके अलावा इंस्टीट्यूट में रहने से, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च जुड़ा हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, तो रिसर्च करते हैं, तो हम नया कोई दवाई उसका ट्रायल करते हैं, कोई नया दवाई बनाते हैं, या बहुत बार अभी हम ऐसा भी करते हैं कि हमारी बहुत सारी इंडियन मेडिसिन्स हैं उनके बारे में प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके हम बताते हैं कि ये दवाई काम करता है, इसको इस तरह से यूज़ करने से बेटर काम करेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा एंगल है और मेरे को लगता है कि इस फील्ड में और ज़्यादा काम करने का ज़रूरत भी है, ताकि हम स्वदेशी चीज़ों का जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके पेशेंट्स की ट्रीटमेंट में, क्योंकि अल्टीमेटली सारी दवाइयाँ आई कहाँ से, नेचर से आई है। कोई भी दवाई आई पहले तो नेचर से आई, फिर उसको केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके हमने फैक्ट्री में बनाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है कि हर बीमारी का इलाज नेचर
1: संभव है
0: में कहीं
1: नेचर के जरिए।
0: कहीं ना कहीं है। तो हमें जो हमारे हिस्ट्री में, या जैसे हमारा यजुर्वेद है, वो एक तरह से मेडिसिन का वेद है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हमें वो पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए उसमें क्या चीज़ है। तो हम उस तरह से कुछ कुछ फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी बताया, उसके लिए हमने हड़ जोड़ करके एक प्लांट होता है, वो प्लांट का इफेक्ट हमने देखा है कि इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस।
1: क्या बात है।
0: हाँ
1: तो रिसर्च एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है
0: हाँ उसमें
1: मेडिकल की
0: एक
1: दुनिया में।
0: एक्साइटिंग है, जैसे वो इस तरह से एक्साइटिंग है, जैसे आप सुबह सुबह उठ करके फटाफट ईमेल चेक करते हो, यार रात को क्या ईमेल आया देखते हैं क्या है ना,
1: जी,
0: ऐसा लगता है ना कि आप उठ करके व्हाट्सएप देखते हैं, अरे कुछ मैसेज तो नहीं आया। तो इसी तरह से रिसर्च में आपको अगर इंक्विजिटिवनेस है, कुछ सीखना नया करना है, कोई बीमारी आपको पता है यार इसका क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो आपको बहुत उसमें यू एन्जॉय दैट। और पेशेंट एक्सपीरियंस तो आई है,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो इस तरह के बड़े हॉस्पिटल जो इंडिया में तो रिनाउंड है, पर बाहर भी कभी जाते तो दे वे लॉट ऑफ रेस्पेक्ट वर्किंग इन सच इंस्टीट्यूशंस।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: जोधा अकबर का एक फेमस गाना है, वो
1: जी
0: सूफी संगीत जो डांस कर रहे होते हैं उस
1: हाँ
0: तरफ,
1: हाँ
0: या
1: हाँ
0: दैट्स कैन
1: वो ख्वाजा मेरे ख्वाजा,
0: ख्वाजा मेरे ख्वाजा। हाँ
1: क्या बात है,
0: या
1: सुनते राजस्थान कनेक्शन सामने आ रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बिल्कुल
0: राजस्थान
1: सुनते,
0: मेरी जन्मभूमि कर्म भूमि सब रहा है, तो
1: बिल्कुल
0: रहना ही चाहिए।
1: ये गाना सुनते हैं, राजस्थान से जुड़ा हुआ
0: बिल्कुल
1: गाना है।

0: साहब, बॉटम लाइन ये है कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हमें नियमित रूप से कराने चाहिए, खासतौर पर हार्मोनल इम्बैलेंस होने का अगर अंदेशा हो तो महिलाओं को।
1: तो मैं ये बोलता हूँ कि दो कॉमन बीमारी जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, डायबिटीज और थायराइड। बाकी डिसऑर्डर्स है वो काफ़ी अनकॉमन है, मतलब उनको रूटीन टेस्ट का ज़रूरत नहीं है, वो आपको अगर डॉक्टर कहे तो कराना, बाकी ज़रूरत नहीं है। तो दो जो बीमारियां कॉमन है, डायबिटीज और थायराइड डिसऑर्डर्स, तो इनके टेस्ट रेगुलर होते रहना चाहिए। क्योंकि डायबिटीज़ के बारे में ऐसा है कि 50% लोगों को डायबिटीज़ होती है पर उनको पता नहीं चलता है,
0: जी, तो इसलिए टेस्ट बहुत
1: तो
0: मायने
1: टेस्ट
0: रखता
1: से
0: है।
1: ही पता चलेगा कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं है। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास, जब डायबिटीज़ पता चलता था, बात है कि वो आँख का ऑपरेशन कराने के, तो आँख के डॉक्टर ने बोला अभी शुगर टेस्ट कराओ और शुगर आ गया, है ना। या कोई
0: जी
1: हर्निया का ऑपरेशन कराने गया और हर्निया के ऑपरेशन की चेकलिस्ट दी, भी ये टेस्ट कराओ, तो डायबिटीज़ का टेस्ट कराया तो आ गया। तो इसका मतलब है उनको डायबिटीज़ चल रहा था, उनको पता नहीं था। तो इसलिए आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट कराएंगे तो बीमारी का टाइम पे पता चल जाएगा। तो
0: जी
1: डायबिटीज़ के रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं, उसमें एक तो शुगर टेस्ट होता है, और एक होता है कि आपका एवरेज शुगर होता है 3 महीने में एक बार, जो 3 महीने का रीडिंग देता है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन A1C।
0: जी
1: तो ये दो टेस्ट आप डायबिटीज़ के लिए कर सकते हैं।
0: और सबसे आखिर में ये बात बताइए कि हार्मोनल इम्बैलेंस का पता चलता है तो घबराने की जरूरत नहीं है।
1: बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और इसका मैं जवाब ऐसे देना चाहूँगा कि जब मैं MD मेडिसिन कर रहा था तो मेरा पोस्टिंग CCU में लगा। कभी कभी ऐसा होता था कि मरीज को बचाने की बहुत कोशिश करते पर हार्ट की वजह से हम फिर बचा नहीं पाते, तो रात भर जग रहे पर पेशेंट तो चला गया। तो एंडोक्राइन इसका उल्टा है, अगर आपने बीमारी सही पकड़ ली तो इलाज होगा, बिल्कुल परफेक्ट इलाज होगा और बराबर चलेगा। तो
0: जी
1: ये मतलब कोई ब्रांच खराब और अच्छा नहीं होता है, सबका ज़रूरत है, सबका वैल्यू उतना ही है। पर मुझे खास तौर से ये पसंद आता है कि इसमें ऑलमोस्ट हर बीमारी का हमारे पास इलाज है, और इसलिए हम बहुत बार मरीज को ये बोलते हैं कि तुम एक बार हमारे चक्कर में पड़ गए तो जिंदगी भर हमारे चक्कर में रहोगे, निकलोगे नहीं। तो उसका वही है कि जिसको एक बार एंडोक्राइन डिसऑर्डर तो ऑलमोस्ट रहता ही है, तो रेगुलर दिखाना है और रेगुलर चेकअप कराना है। और थायराइड डिसऑर्डर्स को भी आपको रेगुलर चेक कराते रहना चाहिए, उसमें T3, T4, TSH एक टेस्ट होता है,
0: जी,
1: थायराइड का ज़्यादा महंगा नहीं होता है, अगर एक हर साल नहीं तो 2 साल में 3 साल में एक बार करा लेना चाहिए, क्योंकि उसको भी इनिशियल सिम्टम्स पता नहीं चलते हैं।
0: डॉक्टर साहब, बहुत ही दिलचस्प बातें आपने आज के इस कार्यक्रम में की हैं और पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को बहुत सारी नई जानकारियां मिली होंगी और वो ज्यादा अवेयर हुए होंगे। तो
1: बिल्कुल
0: इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संजय बरादा विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और हमें इतना वक्त दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
1: धन्यवाद, और मैंने बहुत एंजॉय किया आपका डिस्कशन, एंड उम्मीद है हमारे श्रोताओं को पसंद आएगा, और उनको कुछ को एटलीस्ट जो बोन रिलेटेड इश्यू है जो कि आपने क्वेश्चन की जरा हाईलाइट किया, उनको फायदा होगा उसे। धन्यवाद।
0: बहुत शुक्रिया। ये थी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट यानी हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय बरा

से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय के साथी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है।

0: घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ।
2: श्रोते हो आपण ऐकत आहात आकाशवाणीचा अमरावती केंद्र FM 101.5 MHz आणि प्रसार भारतीच्या न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर। सायंकाळचे 5 वाजतात। थोड्याच वेळात ठळक मराठी बातमीपत्र आम्ही सहक्षेपित करीत आहोत मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून।

उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की नहीं अब हौसलों की बारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है।

उदास आसमां है, दिल मेरा कितना अकेला है। परिंदा शाम के पुल पे बहुत खामोश बैठा है। तुम्हारे शहर के सारे दरीचे तो सो गए, लेकिन हवा से पूछना दहलीज पे ये कौन जलता है।

0: फिर याद आए।
1: छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा।
0: बेदर्दी बाल मा तुझको मेरा मन है।

कभी मत बताना, मैं उनकी आंखों में हूं। वो लोग फूल समझकर मुझे मसलते हैं, उदास आंखों पे आंसू नहीं निकलते हैं, ये मोतियों की तरह सीपियों में पलते हैं।

याद किसी की चांदनी बन कोठे कोठे उतरी है, याद किसी की धूप हुई है, जीना जीना उतरी है।

0: आज के छायागीत में थे सैक्सोफोन पर आधारित कुछ गाने। इन सभी गानों में मनोहारी सिंह ने सैक्सोफोन बजाया। फिल्मों के नाम आपको बता दें।
1: दुनियायों से के जमानायों से का।
0: फिल्म कश्मीर की कली, SH बिहारी OP नैयर।
2: आगे भी जाने न तू।
0: फिल्म वक्त, साहिर लुधियानवी, रवि।
2: वो भूली दास्तां लो फिर याद आ।
0: फिल्म संजोग, राजेंद्र कृष्ण, मदन मोहन।
2: आवाज देके हमें तू बुला।
0: फिल्म प्रोफेसर, हसर जयपुरी, शंकर जयकिशन।
2: बेदर्दी बाल मां तुझको मेरा मन याद करता है।
0: फिल्म आरजू, हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

0: की जगमगाती दुनिया के अभिनय के साथी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, चलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए

कार्यक्रम तराने नए पुराने सुनने वाले सभी नए पुराने दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। गीतकार हैं जमीर काजमी, संगीत है अनु मलिक का, फिल्म का नाम है फिर तेरी कहानी याद आई।

लीजिए सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। गीत है SH बिहारी का, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगून किया है वहां से टेलीफोन।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ कटिले के ओ रास्ते पर ओ सड़क।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छपकर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाजों में। धुन है उत्तम सिंह की, फिल्म का नाम है दुश्मन।

0: अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: विविध भारती के चाहने वालों के लिए अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। नख्मा निगार है हसरत जयपुरी, तर्ज है शंकर जय किशन की, फिल्म का नाम है संगम।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है श्रेया घोषाल और उदित नारायण की आवाजों में। गीतकार है नुसरत बद्र, संगीत है इस्माइल दरबार का। फिल्म का नाम है देवदास।

0: संसद ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। इस विधेयक के माध्यम से भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन किया गया है। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी, लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसका उद्देश्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंककार बहिस्साक्ष्य अधिनियम 1891 में बनाया गया था, जब बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से कागजी थी। लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुए कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है।
1: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि जब तक अमेरिका ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखेगा तब तक हुर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से नहीं खोला जाएगा। श्री बघाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के कारण हुर्मुज जलडमरू मध्य को बंद किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप से पहले इसकी संरचना में बदलाव किए गए हैं। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष 2 टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
3: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती।
2: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
3: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
2: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: साथियों अगला गीत है अनुराधा श्रीराम की आवाज में, गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं अनु मलिक, फिल्म का नाम है मुझे कुछ कहना है।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। बोल हैं राजेंद्र कृष्ण के, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम।

0: साथियों, कार्यक्रम तराने नए पुराने अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।

राष्ट्रीय सेवा विविध भारती से। लीजिए सुनिए झरोखा के अंतर्गत हमारे आज के शेष कार्यक्रम और कल दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से बस कुछ ही देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या रंजन। 6:45 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा संगीत सरिता। 7:00 कार्यक्रम होगा जय माला। और 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आज सुनिए एक ही फिल्म से, आज आपको सुनवाएंगे फिल्म आसपास के कुछ गीत। रात्रि 8:00 हवा महल में आज सुनिए नाटिका गुड्डी की माँ। 9:30 पर आज के फनकार जो केंद्रित है संगीतकार खेमचंद प्रकाश पर। 10:00 छाया गीत में आज सुनिए सलमा सैयद को। कल सुबह 6:05 पर वंदन वार और चिंतन। 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान का भाग सुनिए 277। 7:00 इस कार्यक्रम में कल सुबह 6:45 पर सुनिए श्रृंखला वर्षा चौमासा के 11वें भाग में गायिका शुभा मुद्गल को, प्रस्तुत करता है कांचन प्रकाश संगीत। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं 6:45 पर। भूले बिसरे गीत आपको सुनवाएंगे सुबह 7:00 और 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम हम है राही प्यार के। त्रिवेणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 8:15 पर। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं 2:00, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सुबह 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम आज के फनकार। कल का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता पी जयराज पर, प्रस्तुत करता है रमेश गोखले। 10:00 पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा में सुनिए हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा से की गई यूनुस खान की बातचीत। संपादन सहयोग है काजल भदरगे का, प्रस्तुत करता है जुबैर खान। 11:00 मिश्रित संगीत का कार्यक्रम प्रसारित करेंगे रंग तरंग। 12:05 पर सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। आज की तरह कल भी 1:00 हमारे साथ तय कीजिए संगीत का सफर, कार्यक्रम होगा सुरीला सफर। 2:30 पर होंगे सदाबहार नखमे।

दिन में 3 बजे सखियों का बेहद पसंदीदा कार्यक्रम होगा सखी सहेली। कल के विषय हैं जिज्ञासा, सखी विशेष में रिचाकर, जीवा में की संस्थापक, मुहावरों की दुनिया में घोड़े बेचकर सोना और हल्की फुल्की बातों में चले मेला देखने। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। दोपहर बाद 4 बजे पटारा के अंतर्गत सुनिए सेल्यूलाइट के सितारे में अभिनेत्री और निर्देशक तनिष्ठा चटर्जी से की गई यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। संपादन सहायक मनीषा सिंह, प्रस्तुत करता है तेजश्री कामले। शाम 5 बजे छाया गीत का पुनः प्रसारण होगा और 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। कल शाम 7 बजे सुनिए कार्यक्रम जयमाला।

7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे पॉप एक्सप्रेस। कल रात्रि 8 बजे हवा महल में आप सुनेंगे नाटिका फिर मिलूंगा। लेखक है मेवाराम गुप्त, निर्देशक है पुरुषोत्तम धारवीकर। रात 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार। कल का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता सुनील शेट्टी पर।

ये थी जानकारी आज के शेष और कल दिन भर में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। संध्या रंजन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में पंडित नरेंद्र शर्मा की रचना। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का। फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम।

साथियों, अभी आपने सुना राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। संगीत था कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम था गोपी। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संध्या रंजन।

0: संगीत सरिता के श्रोता मित्रों नमस्कार। शुभा जी आपका विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: शुभा जी, कल आपने हमें दादरा सुनाया है और एक बहुत ही सुंदर रचना जो वर्षा ऋतु से संबंधित, जैसे बोल कितने ही सुंदर और उसमें आपने एक पद भी जोड़ा
1: जी।
0: और बहुत ही सुंदर रचना, कुल मिला के हमें बहुत आनंद आया। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है कि हमेशा ये कहा जाता है कि ठुमरी दादरा
1: जी,
0: मतलब ठुमरी पहले गाई जाती है और दादरा बाद में, या ऐसा
1: नहीं? ऐसा वैसे ठुमरी का जो विस्तार मैंने बताया था वो ज़्यादा होता है, अधिकांश उसकी लय भी थमी हुई रहती है, इसलिए लोग ठुमरी पहले गाते हैं और बाद में दादरा इत्यादि, दादरा हो या फिर ऋतु संबंधी जो चीज़ें हैं जैसे कजरी इत्यादि वो गाई जाती हैं। एक नमूने के तौर पे वो दादरा प्रस्तुत किया था
0: जी,
1: और ठुमरी बाद में भी गा सकते हैं, स्पेशली जैसे अगर कोई ऐसी ठुमरी हो जैसे बंदिश की ठुमरी तो वो गाई जा सकती
0: तो
1: है।
0: तो बंदिश की ठुमरी का क्या मतलब होता है
1: जी? इसमें जो बंदिश जो है वो सर्वोपरि है, और जैसे बंदिश में मैंने पहले भी कहा था एक कार्यक्रम में कि गढ़ी हुई चीज जिसमें कि एक एक मात्रा पे क्या चीज रखनी है, कौन सा शब्द, कौन सा स्वर, कौन सा व्यंजन रखना है, वो पूरा गढ़ा हुआ मामला होता है
0: जी।
1: ये नहीं कि आपको जो आपकी जो गति है उसमें एक मात्रा और दूसरे मात्रा के बीच में इतना समय हो कि आप कुछ उसके एक बना के कुछ नया गढ़ के कह सकते हैं, ऐसा नहीं। बंदिश जो है वो बिल्कुल एक एक मात्रा के बंधा हुआ है, तो बंदिश की ठुमरी भी इसी प्रकार की, बल्कि इतनी अच्छी तरह गढ़ी हुई रहती है कि कई बार थोड़ा सा संदेह भी ये होता है कि ये ख्याल है या ठुमरी है। और बहुत सारी ऐसी बंदिश की ठुमरियां हैं जो कि कुछ लोग ख्याल के नाम से गाते हैं और कुछ लोग बंदिश की ठुमरी के नाम से गाते हैं। इसका संबंध ठुमरी का और बंदिश की ठुमरी का संबंध नृत्य से भी है। तो कहा जाता है कि ठुमरी की जब उत्पत्ति हुई तो वो नृत्य के साथ गाई जाने वाली रचनाएं विशेष रूप से जो बनती थी वो ठुमरी के रूप में आज प्रचलित हैं और परिवर्तित होके भी आई हैं। तो बंदिश की ठुमरी का नृत्य से भी संबंध है, और जो उसमें जो लग्गी का जो अंश है, जब जो तबले पे बजाई जाती है, जो बाद में आप कार्यक्रम में सुनेंगे, उसमें आप देख सकते हैं कि वो एक संबंध कैसे स्थापित होता है।
0: उसमें बोल भी तो बिल्कुल बंधे हुए होंगे,
1: बिल्कुल
0: तराश तराश कर,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: सुनाइए ना।
1: मैंने मुझे मिली ये चीज मंदिर के साहित्य से
0: जी।
1: तो कृष्ण का संबंध जो है वो भारतीय कलाओं से सर्वमान्य है,
0: और वर्षा ऋतु में ये कृष्ण जन्माष्टमी तो होती ही
1: बिल्कुल
0: है।
1: राधा जी का जन्म भी वर्षा ऋतु में ही होता है, और फिर जो लीला है, कृष्ण लीलाएं हैं, वो वर्षा में तो बहुत कुछ लिखा है संतों ने, संत कवियों ने, तो ये एक पद मैंने लिया है। आज पिय पावस रैन अंधेरी, पावस की रैन वो भी घनी स्याह काली अंधेरी, आज पिय पावस रैन अंधेरी, लाल रसिक मणि उठ किन देखहु, दामिनी लर्जत नेरी, इतने पास आ गई, मतलब लगता है कि बिल्कुल कमरे के अंदर दामिनी दमक रही है, बिजली चमक रही है। आज पिय पावस रैन अंधेरी, लाल रसिक मणि उठ किन देखहु, दामिनी लर्जत नेरी, जल बोझक झुकी आए बदरा,

0: ज्यादा भारी हो गए हैं जल लिए हुए बादल, कि वो लगता है कि बिल्कुल अपने बोझ से ढरक जाएंगे।
1: जी
0: जल बोझक झुक आए बदरा, मोरन कुहक घनेरी।
1: मोरन की कुक
0: कुहक, हाँ घनेरी। अरु गहरी गर्जन सुन दिस दिस, हर दिशा से आ रही है बादलों की गर्जन। अरु गहरी गर्जन सुन दिस दिसी, नींद अहुर गई मेरी, उचट गई मेरी नींद। तुम आलस बस सुनत न नागर, वर्षत बन सुख ढेरी। बन में देखो, कुंज में देखो, वर्षा जो हो रही है वो सुख वर्षा हो रही है। चौंक परी सोवत ते पिय पिय, कहत पपीहा टेरी। ये पद है।
1: तो शुभा जी, अब देर क्यों, ठेठ बंदिश सुनते हैं।
0: बिल्कुल, ये देश राग में निबद्ध है और सितार खानी या अधा जो ठेका है उसमें बांधी गई।
1: मतलब सितार खानी ही को अधा कहते हैं।
0: जी हाँ जी
1: जी, तो अनिश जी हमें समझाएंगे।
0: जी बिल्कुल।
2: सोलह मात्रे का सितार खानी या अधा ताल।

0: श्रोता मित्रों, शुभाजी से हम सुन रहे थे राग देश में बंदिश की ठुमरी, आधा ताल में निबद्ध, और आज हम इसी के साथ आज्ञा चाहेंगे। कल फिर मिलते हैं संगीत सरिता कार्यक्रम में वर्षा चौमासा श्रृंखला के अंतर्गत। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा हर दिल से जुड़ी, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम जयमाला आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: सेना।
1: अभी आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार थे कैलाश खेर।
2: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
3: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
2: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
4: मैं अगले दिन आशुतोष गवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, चलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा के हुजूर।
1: दामिनी, इस फिल्म का गीत सुनिए साधना सरगम और कुमार सानू की आवाजों में। गीतकार है समीर, धुन है नदीम श्रावण की।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं
0: और बाकी जिंदगी की जद्दोजहद।

0: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दिल तो पागल है, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं उत्तम सिंह।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हर लम्हा हर पल देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए अदनान समी और सुनिधि चौहान की आवाजों में। गीतकार हैं तेजपाल कौर, संगीतकार हैं अनु मलिक और फिल्म का नाम है चोर मचाए शोर।

0: पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय के साथी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा से हुजूर।
3: साथियों लीजिए सुनिए अलीशा चिनॉय और सोनू निगम की आवाजों में समीर का लिखा गीत। संगीत है अनु मलिक का, फिल्म का नाम है फिदा।

शिवसेना की डॉक्टर ज्योति नागराज वाघमारे ने हिस्सा लिया। प्रस्तावित कानून में बैंकर्स बुक्स या बैंक कार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उसके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का भी प्रावधान है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण या स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन में कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने से रोकता है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, विक्रमजीत सिंह साहनी, डॉक्टर कल्पना सैनी, रेखा शर्मा, धनंजय भीमराव महादिक, बाबूराम निषाद, द्रमुक सदस्य पी विल्सन, बीजत के सुभाषीष खुंटिया, YSR कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉक्टर एम थंबेदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, UPPL के प्रमोद बोरो, BRS के रविचंद्र वद्दीराजू और तेदेपा के विजय चिंता कायला ने हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक में भारत को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करने और वैश्विक कंपनियों को उपकरण, पुर्जे तथा सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य निहित है। उन्होंने कहा कि कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कलपुर्जे ऐसे हैं जिनका भारत में निर्माण नहीं होता, लेकिन देश में उनकी जरूरत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अनुबंध पर विनिर्माण करने वाली कंपनियों से जुड़ी विदेशी कंपनियों को कर छूट देने का प्रस्ताव है। यह छूट वर्तमान में 5 साल के लिए उपलब्ध है, जिसे बढ़ाकर वित्त वर्ष 2040-41 तक करने का प्रस्ताव है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पूर्व में भारतीय डेटा सेंटर का इस्तेमाल करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को कर छूट देने का वादा किया गया था, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकार की बहुस्तरीय मंजूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। विधेयक में डेटा सेंटर के लिए अधिक स्पष्ट और सरल नियमों का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक में UPI लेनदेन करने वाले पर कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। UPI पहले की तरह ही छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए मुफ्त होगा। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के सांवैधानिक संकल्प को खारिज कर दिया है। विधेयक पर चर्चा और पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे इससे पहले ही सदन से वॉकआउट कर गए थे। मंत्री के जवाब के बाद कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। तत्पश्चात उच्च सदन में विशेष उल्लेख के जरिए भाजपा के अमरपाल मौर्य, डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे, डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी, सुजीत कुमार, बाबू भाई जयसंग भाई देसाई, दर्शना सिंह, डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता, डॉक्टर दिनेश शर्मा, अधिकारी मायूम शारदा देवी, केसरी देव सिंह झाला, डॉक्टर कल्पना सैनी और रेखा शर्मा ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। बाद में उच्च सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा की बैठक राजधानी दिल्ली में पिछले महीने नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण 3 बार बाधित हुई। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने और सरकारी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह की सदन में उपस्थिति और जवाब की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर को मिले चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारेबाजी की। सभापति ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध विषयों को उठाने की अपील की। हंगामे के बीच ही भाजपा के राहुल सिन्हा, तरुण चुग, डॉक्टर के लक्ष्मण और बाबू भाई जयसंग भाई देसाई ने आसन की अनुमति से सदन में लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। इस दौरान विपक्षी सांसद आगे की पंक्ति के पास एकत्र हो गए और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिए जाने की मांग करने लगे। राधाकृष्णन ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों से अपनी सीटों पर लौटने को कहा ताकि उनकी मांग पर विचार किया जा सके। अपनी बात का असर

योग्यता न देख सभापति ने करीब 11:20 पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो आसन की अनुमति से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और प्रवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ऊर्जा संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए खड़े हुए, लेकिन कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के उद्देश्य से पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग दोहराते हुए हंगामा जारी रखा। कुछ सदस्य तो अपने स्थान से उठकर आगे आ गए। सदन में व्यवस्था न बनते देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। 15 मिनट बाद बैठक के फिर से शुरू होने पर सदन में बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक और कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को लिया गया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के बीच ही सदन ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा के बिना पारित कर दिया। शोर शराबे के बीच ही सदन में 3 अन्य विधेयक खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए गए। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पहले दिन से यह मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह को विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि मैं सरकार की ओर से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार विद्यार्थियों के मामले को लेकर चर्चा और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष से अनुरोध है कि उन्हें गृह मंत्री के जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, उन्हें पूरा जवाब सुनना पड़ेगा। श्री रिजिजू ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी यह बात कही गई है कि सरकार विस्तार से चर्चा और जवाब देने को तैयार है। इस दौरान विपक्ष के सदस्य सदन में नारेबाजी करते रहे। इस बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। श्री मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उनका कहना था कि यह विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र बदलने का विधेयक नहीं है। विधेयक का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने आसन के समीप आकर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों से कहा कि वे गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहे थे और अब जब संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि गृह मंत्री सदन में चर्चा का जवाब देने को तैयार है तो सदन की कार्यवाही चलने देनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा करने लगे। आसन पर उस समय आरएसपी नेता एनके प्रेमचंद्रन थे जिन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया। वैसे सामान्य तौर पर लोकसभा में प्रश्नकाल के समय आसन पर अध्यक्ष ओम बिरला होते हैं। हंगामा जारी रहने पर भी श्री प्रेमचंद्रन ने बैठक शुरू होने पर भी के भी 2 मिनट अंदर ही दोपहर 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही फिर से आरंभ होने पर भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी

0: करते रहे। हंगामे के बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 और कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहले ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। हालांकि ये दोनों विधेयक केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नाम से सूचीबद्ध थे। हंगामा नहीं थमने पर भी पीठासीन सभापति संध्या राय ने दोपहर 12:14 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस प्रकार मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही लगातार 16वें दिन आज भी सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन में आज पेश किए गए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। विधेयक के तहत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के तहत आने वाला एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के तहत की गई थी। एनसीडीसी के प्रमुख कार्यों में कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और आयात निर्यात से जुड़े कार्यक्रमों की योजना बनाना, उन्हें बढ़ावा देना और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। इस नए विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के वितरण के अनुसार जून 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन और केंद्र सरकार द्वारा सहकारी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बाद सहकारी क्षेत्र के विकास में एनसीडीसी की भूमिका काफी बढ़ गई है। केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 भी सदन में पेश किया गया, जिसमें केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 24 फरवरी को केरल का नाम बदलकर केरलम करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें केंद्र से राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने का आग्रह था। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: संसद समीक्षा आपण ऐकत होता आकाशवाणी मुंबईच्या अस्मिता वाहिनीवरून। थोड्याच वेळात आता दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होणारं हिंदीतलं बातमीपत्र समाचार संध्या, त्यानंतर News@9, स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक आणि संसदेतील प्रश्नोत्तरकालीन कामकाजाचं ध्वनिमुद्रण आम्ही दिल्ली केंद्रावरून सहक्षेपित करणार आहोत।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की देने की अपील की, कहा

0: मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों तथा पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे। पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
1: The bill, among various other things that it wants to do.
2: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
1: Permits authentication through manual, digital and electronic signatures.
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 3-3 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए गए। इनमें से अधिकरण सुधार विधेयक 2026 विपक्ष के शोर शराबे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में 2 विधेयक चर्चा के लिए लिया गया, जिनमें बैंकिंग को आधुनिक और आज के डिजिटल युग के अनुरूप बनाने के लिए बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित किया गया। इसके अलावा कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के बाद इसे लोकसभा को लौटा दिया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है।
5: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली

0: देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
1: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
1: भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है।
3: फिर से मैं चैलेंज देता हूँ राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगडे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
4: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद बल का प्रयोग किया गया। रांची सिटी एसपी पारस राणा और एसपी ग्रामीण गौरव गोस्वामी ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए कहा कि पुलिस ने संयम बरता है। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजी परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: इस वर्ष 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश के युवा शक्ति के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया जाएगा।
5: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 की यात्रा का नेतृत्व है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्णलाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। मणिपुर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इम्फाल में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVI के अंतर्गत 10 लाख प्रशिक्षण के लक्ष्य को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे भ्रामक दावे को खारिज कर दिया है। पत्र सूचना

0: मंत्रालय पीआईबी के फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि पीएमकेवीआई के तहत ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता वैसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हैंडलूम डिजाइनर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया। इसमें डिजाइनर, बुनकर, नेते निर्माता और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, UPI लेन देन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने देने की अपील की। कहा गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Parliament passes taxation bill to strengthen country's manufacturing ecosystem, attract investment and create jobs. Finance Minister Nirmala Sitharaman assures UPI transactions to remain free. Legislation granting legal recognition to digital banking records as evidence also gets nod from Parliament. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges opposition to allow Lok Sabha to function for Home Minister Amit Shah's statement on student protest-related issues. Protests intensify in Jharkhand over recruitment exam irregularities after clashes between students and police during Assembly March in Ranchi. 80th Independence Day celebrations to showcase Yuva Shakti.

0: यशपाल जोड़ी, यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, चलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
3: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है अजनबी।

कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, नगमा निगार है कैफी आजमी, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म का नाम है छोटी बहू।

विविध भारती के चाहने वालों के लिए कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं नीरज, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन, फिल्म का नाम है शर्मिली।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि।
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते थे, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में कोदे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

संगीत के चाहने वालों में बिरला ही कोई होगा जिसने महल फिल्म का ये गीत ना सुना होगा। हम बात कर रहे हैं 40 के दशक के मशहूर संगीतकार खेमचंद प्रकाश की। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्हें समुचित सम्मान और प्रसिद्धि मृत्यु उपरांत मिली है। खेमचंद प्रकाश उन्हीं में से एक थे।

चंद प्रकाश का जन्म 12 दिसंबर 1907 को राजस्थान के सुजानगढ़ में हुआ था। न केवल संगीत बल्कि नृत्य की भी आरंभिक शिक्षा उन्हें अपने पिता से मिली, जो राज दरबार में ध्रुपद गायक और कथक नर्तक थे। किशोरावस्था में ही खेमचंद प्रकाश को पहले बीकानेर और उसके बाद में नेपाल के राज दरबार में गायक कलाकार के रूप में नियुक्ति मिल गई थी। आगे किस्मत उन्हें कोलकाता ले आई, जहां वे सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माण कंपनी न्यू थिएटर्स में

हुए। 1935 में बनी फिल्म देवदास के संगीतकार तिमिर बरन के सहायक के रूप में उन्होंने काम शुरू किया। 1938 की फिल्म स्ट्रीट सिंगर के लिए खेमचंद प्रकाश ने एक मजाहिया गीत भी गाया।

उसके बाद खेमचंद प्रकाश मुंबई आ गए। शुरुआत हुई 1939 में। सुप्रीम पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्में मेरी आंखें और गाजी सलाउद्दीन के लिए उन्होंने संगीत निर्देशन किया।

और फिर बहुत जल्द रंजीत मूवीटोन फिल्म स्टूडियो के नियमित संगीतकार के रूप में खेमचंद प्रकाश नियुक्त हुए। उस शुरुआती दौर में रंजीत मूवीटोन की फिल्में थी

दिवाली, होली, परदेसी, फरियाद इत्यादि। उन दिनों खेमचंद प्रकाश के गीतों में ज्यादातर स्वर होता था खुर्शीद का। इस जोड़ी ने 40 के दशक के आरंभ में बहुत से मशहूर गीत दिए। 1943 में बनी रणजीत स्टूडियो की फिल्म तानसेन जबरदस्त हिट हुई।

1948 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आई जिद्दी। इस फिल्म में एक गायक के रूप में किशोर कुमार को सबसे पहला अवसर दिया संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने। जिद्दी का ही एक और गीत जो लता जी ने गाया था, संगीत प्रेमियों द्वारा खूब पसंद किया गया।

और फिर 1949 में आई फिल्म महल। महल के पहले बाजार में फिल्मी गीतों के जो रिकॉर्ड्स मिलते थे, उन ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स पर फिल्म की कहानी के उस गीत को पर्दे पर गाने वाले पात्र का नाम हुआ करता था। महल फिल्म का ये गीत आएगा आने वाला रिकॉर्ड पर इन बोलों के आगे नाम लिखा था कामिनी। ऑल इंडिया रेडियो

रेडियो से ये गीत प्रसारित हुआ। बहुत से सुनने वालों ने रेडियो के दफ्तर में फोन करके जानना चाहा कि ये आवाज किसकी है, और फिर रेडियो से गायिका का नाम प्रसारित हुआ, लता मंगेशकर। संगीतकार खेमचंद प्रकाश। इस गीत को और लता जी को बेशुमार शोहरत हासिल हुई, मगर अफसोस महल के रिलीज होने से 2 माह पूर्व 10 अगस्त 1950 को संगीतकार खेमचंद प्रकाश 42 वर्ष की अल्पायु में इस संसार से विदा हो चुके थे।

0: आज का यह कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार खेमचंद प्रकाश पर। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब जयंत पात्रीकर को दीजिए इजाजत।
1: आज के फनकार।

0: आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
1: माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन नंबर 226, दाखिल लक्ष्मण गौरव।
2: प्रश्न संख्या 226, क्या विद्युत मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क विद्युत संशोधन नियम 2026 तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के प्रारूप के अंतर्गत प्रस्तावित प्रमुख उद्देश्य तथा प्रमुख सुधार क्या हैं? ख इन सुधारों से विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता में सुधार, परिचालन दक्षता में वृद्धि तथा उपभोक्ताओं को विश्वसनीय एवं 2400 घंटे बिजली आपूर्ति किस प्रकार सुनिश्चित होने की संभावना है? और ग इन सुधारों को अंतिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से परामर्श करने तथा देश भर में इनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?
1: फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर के लक्ष्मण गौरव।
3: सर, अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ अवर बिलोड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, India's power sector has undergone a historic

0: थैंक यू
1: श्री मनोहर लाल विद्युत मंत्री
2: इसको चार करने में डिस्ट्रीब्यूटर टेक्नोलॉजी बैटरी एनर्जी स्टोरेज और स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी की फाइनेंशियल फैसिलिटी मजबूत करने के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं और जो प्रावधान बनाए गए हैं वो सारे देश भर के लिए लागू होंगे और तेलंगाना में भी उसी प्रकार से उनको लागू किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी तीव्रता से लाने के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी स्टोरेज के साथ सबसे पहले रूफ टॉप सोलर, उसके बाद पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग, इस प्रकार के प्रावधान रिन्यूएबल एनर्जी को ओपन एक्सेस ही सेल्फ सेल करने का प्रावधान रखा गया है। सेल ओपेटेड स्टोरेज अर्थात जहां जनरेशन होगी उसके निकट ही स्टोरेज के प्रावधान, चाहे बैटरी स्टोरेज के हों अथवा पंप स्टोरेज के हों, उनको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा गया है। और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज एग्रीगेटर को बेहतर रिन्यूएबल एनर्जी का फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी हमेशा एनवायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है और एनवायरमेंट की फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग एक बहुत इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसलिए ये पॉलिसी अपने सभी आयामों को ध्यान में रखकर के बनाई गई है और इस पॉलिसी में नए प्रकार की टेक्नोलॉजी जैसे फ्लोटिंग सोलर, एग्री फोटोवोल्टिक सॉल्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांसमिशन ऑप्टिमाइज डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता है। अर्थात सोलर एनर्जी को अधिक से अधिक उपयोग हम कैसे कर सके, इसका भी इसमें प्रावधान रखा गया है। वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी को मैनेज करने ग्रिड स्टेबिलिटी, क्योंकि ग्रिड स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट इसमें आता है, क्योंकि ये डे टाइम में ही यानी सोलर एनर्जी डे टाइम में ही मिलेगा और ग्रिड की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हमको उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है। उसको सुधारने के लिए पीक डेफिसिट को कम करने के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बैटरी स्टोरेज सिस्टम, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, इनको लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजी, बैटरी कंपोनेंट को भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अब से पहले बैटरी के कंपोनेंट ये सभी इंपोर्ट करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब क्योंकि हमें अपने मेक इन इंडिया के आधार पर और सभी कंसल्टेशन कर लिया गया है, ये फाइनलाइज करने के राह पर है और इसके अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट, इसके बारे में पूछा गया। डिस्ट्रीब्यूटर एनर्जी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेटर या डीएसओ फ्रेमवर्क ये भी बनाया गया है। डिमांड साइड मैनेजमेंट, क्योंकि डिमांड साइड मैनेजमेंट और सप्लाई साइड मैनेजमेंट दोनों का ध्यान रखेंगे तभी हम रेगुलर पावर की सप्लाई हम कर पाएंगे और ऐसे ही डिमांड का रिस्पॉन्स क्या है स्मार्ट ईवी चार्जिंग, क्योंकि आगे आगे अब हमारी जो डिमांड है चाहे डाटा सेंटर हो अथवा ईवी चार्जिंग हो, एआई का जो इस्तेमाल हो, इससे एनर्जी की डिमांड ये हमारी बढ़ने वाली है। इसलिए जीआईएस बेस्ड एसेट मैपिंग और डिजिटल ट्विन, इसी प्रकार टाइम ऑफ यूज डायरेक्ट यानी टाइम ऑफ यूज में जिस समय हमारे पास सोलर पावर ज्यादा है उस समय उसका यूज ज्यादा बढ़े, जब हमारे पास पावर की कमी है उस समय डिमांड इसकी शिफ्ट की जाए, तो टाइम ऑफ यूज टैरिफ को भी इसका प्रोत्साहन देने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि नई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा सके। मान्यवर, डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी, क्योंकि आज पावर डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा अगर कोई कठिन बात है वो डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी, ये कंफर्म है। सभी डिस्कॉम ये लगभग घाटे में जा रहे हैं और टोटल देश भर के डिस्कॉम का जो घाटा है इस समय लगभग 6,85,000 करोड़ रुपया हो गया है। इसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि लंबे समय तक डिस्कॉम घाटे में चलेंगे तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। इसलिए मल्टी ईयर टैरिफ फ्रेमवर्क ये जो होता है उसके तहत टाइमली कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ ये कैसे बनाया जाए, इसमें इसका

0: में हमें उपयोग करना है। पावर परचेज कॉस्ट और ऑटोमेटिक पास थ्रू, जितनी कॉस्ट आएगी उसको पास थ्रू कैसे करेंगे, ये अभी तक ऑटोमेटिक नहीं था, इसको समझौते के तहत किया जाता था, लेकिन ऑटोमेटिक टैरिफ के अंदर इसको जो है कैसे पास थ्रू हो। हमारे एपीएमसी लॉसेज एक समय था 2014 में जब 30% से ऊपर था, अभी देश भर का जो एपीएमसी लॉसेज है वो लगभग 15% है, काफी कम आया है, लेकिन इसको और भी हमको इसको कम करना है, वो भी इस पॉलिसी के अंदर दर्शाया गया है। कैसे लॉस रिडक्शन हो, कैसे हमारा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कोई प्लांट परफॉर्मेंस अच्छा करता है उसको कैसे इंसेंटिव दिया जाए, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार गवर्नेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट, ये कैसे कम हो, क्योंकि कॉस्ट को कम करने के लिए कई तरीके होंगे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, ये कैसे कम हो, ये पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट और सब्सिडी बर्डन इसका कम करने के लिए स्टोरेज के साथ साथ एग्रीकल्चर फील्डर के सोल्यूशन को भी प्रभावित करती है। तो हमने तीन प्रकार के और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा बीमा योजना ने पीएम कुसुम की तीन योजनाएं बनाई गई है। पहली योजना उसके अंदर जिसको कंपोनेंट ए कहेंगे, वो 2 मेगावाट तक ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर सिस्टम इसके ऊपर डाला जाएगा, और चाहे वो कोई भी जमीन हो, कल्टीवेटर हो अथवा बैरन हो, इसमें पावर को बना सकते हैं, पावर को ग्रिड से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी को दे नहीं सकते हैं। एक योजना उसमें कंपोनेंट बी है, जिसके अंदर हम ऑफ ग्रिड इस प्रकार के कनेक्शन देते हैं, ना पावर ली जा सकती ना दी जा सकती है, केवल किसान अपने उपयोग के लिए उस सोलर पावर का उपयोग कर सकता है। और कंपोनेंट सी, इसमें एक्स्ट्रा पावर यदि बनती है तो ग्रिड में डाल करके किसान जो अपनी इनकम भी कर सकता है, अगर किसान को अपनी फसल के इनकम के साथ साथ ऊर्जा दाता बन करके और ऊर्जा की इनकम अपने साथ जोड़नी है, तो किसान को एक बहुत बड़ा लाभ इसमें होने वाला है। धन्यवाद। ऐसे ही जो हमारे डाटा सेंटर हैं वो लगातार इसमें बढ़ रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के नाते से स्मार्ट मीटर का प्रावधान इसमें किया गया है, और स्मार्ट मीटर में भी ऑप्शनली ये भी कहा कि पोस्ट पेड किस प्रकार से लागू किया जाए, तो पोस्ट पेड के हिसाब से भी हमने सबसे पहले गवर्नमेंट मीटर और उनको अलाउ किया है जो पोस्ट पेड पर आए, बाकी सबको ऐच्छिक रखा गया है, कोई आएगा तो अच्छा है, पेड के लिए इंसेंटिव की स्कीम बना रहे हैं। इसी प्रकार से तेलंगाना का जहां तक पूछा है, तेलंगाना पीएम कुसुम के टोटल 1797 मेगावाट में से 84 मेगावाट अभी उन्होंने कंपोनेंट ए में उपयोग किया है। तो ये तेलंगाना के नाते से इस प्रश्न का जैसे उत्तर दिया, इसको स्टेक होल्डर इनपुट पर ध्यान करके ड्यू कंसल्टेशन के बाद फाइनल पॉलिसी नोटिफाई की जाएगी।
1: नाउ द सेकंड सप्लीमेंट्री सत्रम सिंह साधु जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: करोड़ रुपए का आपने सैंक्शन किया है पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे किसान की खेती के लिए बैकबोन है चेयरपर्सन साहब, और हाईली डिपेंडेंसी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। 14 लाख ट्यूबवेल से किसान खेती के लिए पानी निकालता है, और मैं किसान का बेटा हूं, मैंने देखा कि खेतों में जो खंभे लगे हैं बिजली के वो हमारे लिए बाधा बन रहे हैं। मैं मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, सवाल भी पूछना चाहूंगा कि खेतों में से खंभे हटाकर अंडरग्राउंड केबल डालने के लिए अभियान चल रहा है, वो कब तक पूरा हो जाएगा, और पंजाब सरकार को कितनी सहायता दी जा रही है केंद्र की ओर से, मेरा ये सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद
0: सभापति महोदय। ये विशेष रूप से पंजाब के आंकड़ों से जुड़ा हुआ है। वैसे तो सारी योजनाएं जो भी बनाती है प्रदेश सरकारें बनाती हैं और अपने दायरे को रखकर के ध्यान में रखकर के बनाती हैं। पंजाब की जो फाइनेंशियल वायबिलिटी डिस्कॉम की, जैसा मैंने पहले कहा, ये बहुत ही अच्छी नहीं है, तो पंजाब की डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी को देख करके ही उनको ऋण मिलता है। इसी को जो पंजाब के मुख्यमंत्री स्वयं मुझे मिलने आए थे, उनको ऋण की आवश्यकता आरईसी से पीएससी से थी, लेकिन आरईसी पीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है, उनको उसकी वायबिलिटी अपने आप देखनी है कि कौन सा लोन हमको देना कौन सा नहीं देना है। हाँ, जहां तक पावर किंग की डिमांड है, इस डिमांड को भी समय समय हम पूरा करते हैं, जब भी ये मांगते हैं तो उतरते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं हमारे कहने के अनुसार भी पंजाब के डिस्कॉम या पंजाब की सरकार उसको आगे नहीं बढ़ती है, आगे न बढ़ने

0: कारण से, सेलमेंट के कारण से चीजें सामान मूटी पर सोच के नहीं जा सकती। उसका कारण है कि बाजार में बिजली मिलती है, अगर खरीदनी है तो बाजार से खरीदी जा सकती है, लेकिन बाजार से खरीदने के लिए पंजाब के पास पैसा नहीं है। और पंजाब ने विशेष तौर पिछले साल का जो एक हमारा ग्रोथ करने का ऑर्डर होता है उसमें एक एम्बिक्विटी पाई गई, उस एम्बिक्विटी के कारण से उनका केस एप्पल में चला गया। एप्पल ने अभी निर्णय देना है, जैसे ही ये एप्पल का 16 अगस्त को 18 अगस्त को डेट लगी है, उस प्रकार से जैसा निर्णय आएगा इनके फाइनेंशियल ठीक होंगे तो इनको पूरी सहायता की जाए।
1: श्रीमान विजय चंद्रकालिया जी, श्रीमान विजय चंद्रकालिया जी,
0: धन्यवाद जी। पूरी माता ग्रीन हाइड्रोजन हब इन अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट, दिस इज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन आई एम विटनेसिंग दिस green hydrogen plant in our own district. So the project envisages an investment of approximately 1.85 lakh crore, including 20 gigawatt of renewable energy capacity, and is planned to produce 1500 TDP of green hydrogen and 7500 TDP of green hydrogen derivatives. So my question here is, I want to ask the Honorable Minister, if the government is considering measures to ensure time-bound coordination between NTPC, the central transmission utility and other concerned central agencies for the required transmission and grid connectivity, so that adequate power infrastructure is in place ahead of commissioning and does not constrain the planned capacity of future expansion.
2: Honorable Minister,
0: Shubham Mohoday, वैसे तो जो उन्होंने प्रारंभ किया कौन से प्रोजेक्ट के लिए पूछ रहा है ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आया है, लेकिन फिर भी इन जनरल जो ने विषय उठाया कि ट्रांसमिशन की जो कठिनाई है, जो दिक्कत है, मैं मानता हूँ बहुत से एरियाज में अलग अलग कारणों से ट्रांसमिशन लाइन की दिक्कतें आती हैं। ट्रांसमिशन लाइन चूंकि बहुत से मल्टी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जनता का विरोध भी होता है, किसानों का विरोध भी होता है, एनवायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं, उन सबको सुधार करने के बाद अब ROW का जो सेक्टर विशेष तौर पर रहता है उसके लिए नई गाइडलाइंस तय की है। और नई गाइडलाइंस, मुझे खुशी है इस बात की कि कुल मिलाकर 17-18 स्टेट्स ने नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है, और नई गाइडलाइंस जारी करने के बाद किसानों का कंपनसेशन पर्याप्त मात्रा में मिलने लग गया उनको, और वहां की लाइनें चालू हो गई हैं। लेकिन जहां कहीं ट्रांसमिशन लाइन भी नहीं बनेगी वहां इवैक्यूएशन करने में जनरेशन होने के बाद भी कठिनाई आएगी, इसलिए जहां कहीं भी विषय कर रहे हैं वो प्रश्नों के अलग से स्थान के बारे में कोई बताया गया तो जैसा अलग प्रश्न रखेंगे उसका उत्तर देंगे।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रोफेसर मनोज कुमार झा, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी,
3: मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं पहली बार इस सदन में मुझे बोलने का मौका मिला है, आपके माध्यम से मैं विद्युत मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ जहाँ नया उद्योग धंधे खुल रहे हैं और लगातार विद्युत की आवश्यकता बढ़ रही है, तो क्या इस संबंध में दृष्टिगत रखते हुए जो बलौदा बाजार जिला है छत्तीसगढ़ का, वह सीमेंट उद्योगों का हब है और वहाँ लगातार ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, तो क्या नवीन प्लांट ऊर्जा से संबंधित वहाँ लगाने की कोई योजना है, या अन्य जिलों में छत्तीसगढ़ में कोई नई ऊर्जा से संबंधित हमारे ऊर्जा प्लांट लगाने की कोई योजना है? मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सदन को जो मुझे यहाँ आप सबके बीच में पहली बार आज बात रखने का मौका मिला है, सादर प्रणाम।
0: आदरणीय सभापति जी, वैसे देश भर में इस समय पावर की कहीं भी शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि हमने इस बार हाईएस्ट पीक डिमांड पावर की 270.8 गीगावाट एवर हाईएस्ट इसको हमने आपूर्ति की है, और आज भी हमारी तैयारी है तो 284 गीगावाट की हमारे पास कैपेसिटी है, अगर और भी आवश्यकता पड़ेगी उसको हम पूरा करेंगे। अगले वर्ष में 300 से ऊपर गीगावाट की हमने योजना बना ली है, इसलिए पावर देश भर में अब सरप्लस तैनात है, लेकिन पावर सफिशियंट हम अपने देश के अंदर है। इसी प्रकार से अब

0: प्रदेश में अपनी योजनाओं स्वयं बनाते हैं, किसी प्रदेश में कोई कमी नहीं रहती है। हाँ, यदि उनको पावर कहीं अपने रीजन के अंदर पावर नहीं मिलती है तो ट्रांसमिशन के कारण से पावर अगर नहीं पहुंचती तो अलग बात है, अन्यथा पावर काज ओपन मार्केट में भी उपलब्ध है और ओपन मार्केट में जितनी उपलब्ध होती है उतनी खरीद भी आती नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ का जहां तक विषय है, कहीं पावर की कोई भी हमारे पास हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई डिले हो रहा है तो स्थानीय विषय कोई हो सकता है, अगर अलग से उसका प्रश्न आएगा तो कम जवाब देंगे।
1: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

बांध लेंगे हाथ पे, सीने पे सजा लेंगे तुमको, जी में आता है तावीज बना ले तुमको, फिर तुम्हें रोज संवारे, तुम्हें बढ़ता देखें, क्यों ना आंगन में चमेली सा लगा ले तुमको।

0: कभी ख्वाबों की तरह आंखों के पर्दे में रहो, कभी ख्वाहिश की तरह दिल में बुला ले तुमको, है तुम्हारे लिए कुछ ऐसी अकीदत दिल में, अपने हाथों में दुआओं सा उठा ले तुमको। इस कदर टूट के तुम पे हमें प्यार आता है, अपनी बाहों में भरे और तुमसे चुरा ले तुमको।
1: ये जिंदगी की महफिल, महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे, जुल्फों से कोई

जख्म हरा है, देख विदा में ये रंग भरा है, मेरे जिगर का जख्म हरा है, सीने से मेरे सर को लगा दे, हाथ में तेरे दिल की दवा।

0: के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आ जा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आ जा रे आ जरा, लहरा के आ जरा,
1: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। साथियों, अब वक्त आ गया है कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। आज की मुलाकात बस इतनी, अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।

तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है।

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हाँ हमको मोहब्बत है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
1: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: Electronic signatures.
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित

0: स्थापित करना है।
1: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के

0: नियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। चीन में तूफान डॉल्फिन के कारण तेज बारिश के बाद बाढ़ आने की खबर है। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तट से टकराने के बाद तूफान के कमजोर पड़ने के बावजूद खतरा बना हुआ है। आज सुबह तक फुजियान प्रांत में जमीन और समुद्र दोनों तरफ के संवेदनशील क्षेत्रों से 168,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by RS Raghu. The Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 today, with the Rajya Sabha returning it to Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill. The bill seeks to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, the Income Tax Act 2025, and the Finance Act 2026. The legislation will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on 5th June this year. Replying to the discussion, the Union Finance Minister said that the objective of the bill is to strengthen India's manufacturing ecosystem, attract further investment, generate employment, and promote manufacturing activities. She said, the second major reform relates to providing tax exemptions to foreign companies procuring data services from specified data centers in India and enhancing ease of doing business. The minister clarified that the bill does not impose any tax or transaction charge on UPI users.
3: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider and decide whether any MDR should be introduced, and if so, its scope and structure. Therefore, no MDR framework has yet been finalized.
2: The Parliament also passed the Bankers' Books Evidence Bill 2026, with Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Lok Sabha Speaker Om Birla today made a personal appeal to the floor leaders to cooperate in the smooth functioning of the House and participate in the discussion on key bills. Mr. Birla stated this during the Business Advisory Committee BAC meeting held at Parliament House. He said, the people's issues cannot be left waiting in the corridors and they must be reflected, debated and resolved on the floor of this House. Speaking to reporters at the Parliament premises after the BAC meeting, Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government is ready for a detailed discussion in Parliament regarding the recent student protests and related issues. Mr. Rijiju appealed to the opposition to allow the House